محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض

أصواتكم فوق صوت

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-28-27274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो ना पहिरियों कदम वधायो।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू है।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: जा पीउ रेडियो ते चाड़े मसाले जो ॿुधाइनि पिया भला इहो त ॿुध ऐं वठी अच
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा
3: हा भाग भरी चङो थो लॻे मां हाणे ई थो वठी अचां
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिनि उते सुठी खोराक ढोरनि जी ज़रूरत आहे
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा
6: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

到啊！

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ
1: 0301-8951
2: छो न खुश थिया दी जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं
1: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
4: मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खु़शख़बरी पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो A1 आटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज़ थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
5: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
6: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
6: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
8: उम्मीद के दिए जलते हैं
9: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
10: अस्सलाम वालेकुम अदा
11: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
10: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
11: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
10: न अदा
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
10: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی
11: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
10: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
6: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
11: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
12: 03013992836
13: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मके दिफाई मुआहदे के अस्करी सहकार में तब्दील करण जो आज़म मके मुआहदे में शामिल मुल्कन जे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस एंड चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो सऊदी अरब में इजलास ISPR मौजूद इजलास में सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं सऊदी अरब के खतरन जो जाइज़ो वरितो वियो. इजलास में मके जे शहरी आबादी इक़्तिसादी अॾावतनि ते हमलनि जी मज़म्मत शिरकत कंदड़नि हथियारबंद फ़ौज जे पेशावरनि सलाहियतनि खे साराहियो. इजलास में टिनी मुल्कनि जे फ़ौज विच में तआवुन खे हथियूं कयूं वयूं. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे सते ॾींहं वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी आहे. अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो. नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो. सखर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पारां एडिशनल सेशन जज जावेद मीराणीअ ते हमले ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बायकाट. वकीलनि जो चवण आहे त सिंध पुलिस जी रटिया आहे जो कोर्ट जे गेट आॾो रुकावटूं विझी हिकु जज ते हमिलो कयो वियो. पुलिस हिन वक़्त ताईं हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे. जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि. जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो. हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे. तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो. सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था. असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल. ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो. ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk. वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274. ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं. एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर. अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो. खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ. अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है. गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार. फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर. नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है. आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं. पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. 0300-338-5569.
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि.
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी.
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100.
6: असली चीजान चारो मसालो जी सुन्याना पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा. जीजान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त. जीजान चारो मसालो, ढोरे सेहतमंद. जीजान चारो मसालो, जीजान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो.
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज. मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 3300-3105-109, 3300-3105-109।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
8: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा?
11: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
10: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
11: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर,
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
12: 0301-399-2836।
13: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोज मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
3: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: सत शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सजा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो आहे। अपना आर्म्स जो कंट्रोल हिन वक़्तु ईरानी बहरिया आहे। पासदार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वो बि चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि अपना आर्म्स खोराए न सघियो आहे। अमेरिका जे हथियार फिठा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी। इस्लामाबाद जे सेफ सिटी कैमराउनि खे नुक़सान पहुचाइण ते 20 लख रुपया ॾंड लॻंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी खे छॾी सेफ सिटी कैमराउन ऐं भड़काईंदड़ ते बि बार जो एडिशनल सेशन जारी ते हमले खिलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बायकाट। को बि वकील कोर्ट में पेश न थियो। अदालत ॿाहिरां एहतजाज बि कयो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त अदालत जे गेट आॾो रुकावटूं रखी हिकु जज ते हमिलो कयो वियो। पुलिस हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। सजावल जुणे जो भरिसां ज़मीन जे पुराणे तकरार सां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो फायरिंग। ज़ख़्मी बिरादरी जे ॿिनि मां ॿिनि ॼणनि खे मुंतकिल कयो वियो। धुरियुनि में छिकताण बि। हैदराबाद जे फुलेलीवाह में नवाब शाह वासी पहुची परवेज़ अली जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी। अफ्रीकी मुल्क कांगो में फौजी जहाज किरी तबाह। ॿिनि आफ़ीसरनि समेत 14 ॼणा अजल जो शिकार। कांगो जे फौजी तर्जुमान चयो आहे त जहाज हादसे में फौत थींदड़ अलॻि जो जनरल शामिल आहे। हादसे जा कारण मालूम करण लाइ जांच जारी आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 अरब इंसान जी सघे थो दुनिया खे। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स जो चवण खां सवाइ वॾो बणजी सघे थी। ॾोहारिन एआई जो ग़लति इस्तेमाल करे सघनि था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में कीजिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर, रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385699।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे से कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-310-5109, 03000-310-51।

0: जहाँ जी पंसार करो इरशाद 18 पर कोस आई होंडा शोरर 9 ते 10 ते आबा है एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर या जिते हॉर्विस कई में दिया है पनिया जा तमाम जेनी रियायत ते इस होंडा मोटरसाइकिल ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन नजरी है जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कार करदगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंपाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड आई 03208000003
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु सिंध एरिया ज़िले सां वास्तो हुजे

0: फिर खोलो ये थई
1: निकल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ई हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हर इश्तिहारात हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नजगर लस्टिक
2: रमली जिसकाणी
3: 03019 2836
4: मेहराबपुर के हो 94

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: शिकार न रहे पाकिस्तान जैसे जो पानी रोकण या रुख मोड़ण वारे कंहिं भी कोशिश के जंग कदम समझो वेंदो. गडियल कौमन जी जनरल असेंबली के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त नदियूं कौमन जी वञ उझाईंदियूं आहिनि विराईंदियूं न आहिनि. सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर खिते लाइ ज़िंदगी जी ज़मानत आहे. भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि कानूनी जवाज़ न आहे. कश्मीर पाकिस्तान जो शहर रग आहे ऐं रहंदो. कश्मीरनि जे सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखी वेंदी. पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर खिते जी अमुल लाइ आहे. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर खालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात. पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़. सऊदी अरब में शहरी ऐं इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बे ख़्यालनि जी ॾे वठ कई वई. सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर खालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान हिकु दिफ़ाई मुआदे तहत रहन जी गॾिजाणीअ जो जाइज़ो वरितो वियो. मके दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरजायो वियो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे 7 ॾींहनि वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी. अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो. नवंबर में थींदड़ पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो. नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आबना अर्मुज खे ट्रंप ते जारी करे छॾी. सत शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो. आबना हर्मज़ जो कंट्रोल हिन वक़्तु ईरानी बहरिया वटि आहे. पासदार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोबी चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबना हर्मज़ खोलाए न सघियो आहे. अमेरिका जे हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी. पाकिस्तान खिते में गेटवे जो किरदार अदा करण लाइ तयार आहे. जटादार तरक़ी मुआशी इंतिज़ाम ऐं वापारी भाईवारीअ खे हथी ॾियण लाइ पुरज़म आहियूं. न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म सकदार चयो आहे त खिते ऐं विचोबर जे मौजूदा सूरत हाल ते ॻणती आहे. आलमी कानून मूजिबि तकरारनि जे पुरअमन हल लाइ पुरज़म आहियूं. पाकिस्तान तकरारनि जे हल लाइ सालसीअ जो किरदार अदा करे वकार बुलंद कयो. पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो. पाकिस्तान ऐं कतर खिते में अमुल लाइ अञा बि किरदार अदा करे रहिया आहिनि. दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई. हाणे महिमान नवाज़ी पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई. अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लति कई. पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश न आहे.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जहर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आरई 03073592120।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए दंदला तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात उनको मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दो के समंदर चाहते की बारिश लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे गल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागता समय से आसमान तक जिंदगी से मौत एक चांस से तौर तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब आप सुन रहे हैं लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो, ताकि आप लोगों को पता चले कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। तो क्यों की बातें तो हम करेंगे, लेकिन कैसे जरूरी है ये आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमारे साथ मौजूद होते हैं कनेक्टेड होते हैं उनको नहीं पता कि भाई वो कौन सा प्रोडक्ट अपने ना चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे या फिर कौन सा प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन के मुताबिक है भी या नहीं। जब ऐसी तमाम चीजें आपके जहन में भी आ जाती हैं और तमाम तरह चीजें आपको कंफ्यूज कर देती है, भाई खूबसूरती के मामले में क्या हमें करना चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीजें इन करनी चाहिए लाइफ के अंदर, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी इस पूरे प्रोग्राम में कि आप हमारे साथ साथ मौजूद रहकर किस तरह अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिया करें। बाकी तो आप लोगों को बताते रहेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट्स साबित होने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। तो डियर लिसनर्स अंदर की हालत उनकी से ही आपकी हालत उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे में आपके साथ मौजूद रहूंगे और इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ करेंगे जी इन्नी शाली बातें। और इन्नी शाली बातों में हम जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कैसे भूल सकते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी वक्तन फवक्तन याद करवाएंगे आप लोगों को और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्या फायदे हैं वो भी आप लोगों को बताते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए।

यानी कि बहुत सारी खवातीन हमें किचन में सुन रही होंगी, आंटियां, अम्मी आए और खालाएं, बाजियां, और इसी के साथ साथ खाना बनाते बनाते हमारा प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। और बाकी अगर आप वेले शेले ही हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको भी वेलकम कहते हैं। और यहाँ पर आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाने का काम करेगी भाईजानी सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हम आगा से प्रोग्राम करेंगे जनाब एक बहुत ही खूबसूरत से जो है ना वो कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा सुनते हैं, उसके बाद वापस आकर आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है और आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से किस तरह फायदा उठाने वाले हैं। तो बिल्कुल जी सब कुछ बताएंगे और वापस आकर आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान ओके जी क्या बात है बहुत ही ब्यूटीफुल सा कसीदा जो कि आपने यहाँ पर एंजॉय किया और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और क्यों जरूरी है ये बताया जाएगा अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए बाबू कहीं देर ना हो जाए ऐसा ना हो कि भाई सारे लोग खूबसूरत हो जाए बस आप ही पीछे रह जाए तो आपने भी जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का परचेज करना है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करना है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते जाना है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं इसी के साथ साथ आप तमाम लोगों को वेलकम करने के साथ साथ ये बताएं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जाएगा और इसी के साथ साथ आपको क्या तरीके कार फॉलो करके हमारे प्रोग्राम में जो है ना वो शामिल प्रोग्राम हो सकते हैं तो अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीके कार होंगे बताते हैं लेकिन आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दे बिल्कुल जी तो आज के प्रोग्राम का जो आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है वो एक पहेली होने वाली है और पहेली कुछ इस तरह से होगी कि आप मुझे बताइए किस चीज को देखने के लिए हाँ जी किस चीज को देखने के लिए उस चीज की ही जरूरत पड़ती है ये क्या हो सकता है एक इस चीज को देखने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ सकती है आप मुझे बताएं जल्दी से और अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं तो क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे करेंगे और शेयर कर देंगे तो पोस्ट को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं आप भी हमारे प्यारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और मुझे ये बताइए जनाब टॉपिक के ऊपर आपका क्या जवाब होने वाला है कि वो क्या है जिसे देखने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ जाती है और इसी के साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट आ जाता है कि जब आप जो है ना परचेज करने के लिए जाते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आप लोगों को दुकानदार जो ना वो चूना लगा देता है आपको कोई और प्रोडक्ट पकड़ा देता है कहता है कि भाई ये ले जाएं ये प्रोडक्ट जो है ना आजकल चल रहा है अच्छा है ब्ला ब्ला ब्ला तो अगर आप भी इस तरह के स्कैम से बचना चाहते हैं आप चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करें तो आपको जो नंबर प्रोग्राम में बताती हूँ ना उन नंबर्स के ऊपर रब्ता रखा करें उन्हें कॉल किया करें उन्हें मैसेज किया करें उन्हें बताया करें कि हम फलां जगह से आपका प्रोग्राम सुनते हैं फलां जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है तो आप अवेलेबल करा दें या फिर हमें बता दें कि कहां कहां पर अवेलेबल है ताकि हम जाकर जो है ना वहां से परचेज कर सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या क्या निशानियां हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी और साथ साथ आप जरा नंबर नोट कर लीजिए सबसे पहले तो आज का जो नंबर होने वाला है प्रोग्राम का वो होगा जनाब 0332738 4309 बड़ी 383 है 73 84 309 अब यो नंबर आहे 03125025907 बड़ी 312 50 25 970 ही बई नंबर समा डायल कयो पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी अगर अवेलेबल आए पर ता हमार डी स्किन जो फेस वॉश कौन मिली रहयो आहे तो कोई भी तमा नंबर ते राबतो करे डी स्किन जो फेस वॉश है ना ओ पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए बैठो ठीक है सो ही जनाब तमाजी आसानी चलाए हुंदा जी ता परेशान थियो आई ताके खबर हो जे ता किथे वेना तो तवा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम सा मिली सके थी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाईंदा रहो आई खूबसूरत थींदा रहो उन के अलावा जेके जेके मानोस असा फेसबुक ते मौजूद आन बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर लाजमी करना कयो तां जो कम हुंदो आहे पांजो कम ईमानदारी सा करना कयो जे दसो मां पांजो कम ईमानदारी सा कयां थी सो तां भी पांजो कम ईमानदारी सा कयो सारी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करे छडींदा कयो जे इलाही सारे मानन के सा बुधाए सगुं ता बाबा साईं तवां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां जी स्किन जे लाइ भी केतरी ज्यादा जरूरी आहे उन के अलावा फरवा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। मैं ठीक हूं जी, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक है। और मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माई स्वीट बुआ जी, ऑसम शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और हमारे साथ फहीम शेख, कहते हैं कि रूह के राहत हुई जमानो बेमिसाल हो, मासूम जवानी हुई बारानों को ख्याल हो, न याद कहें जी न कहें जो इंतजार हो, न उजागो अखिन के नई बेचैनी दिल के, नई को बेवफा यार हो, मगर उस्ताद वा तदें जी गाला जदें न को न कहें सा प्यार हो। या गाल तदें जी थी सके थी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मदद। और कहते हैं कड़ा हाल आए, खुश आयो सफा चाक स्लेट कलम गाड़ी मस्जिद डबी असम विची वयासी प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी तमाम आगे। थैंक यू सो मच प्यारा भा मोहब्बत प्रोग्राम बुध पया। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे, कहते अकेलो रहन अकेलो विढ़ण अकेलो जीण सीखो, दुनिया कहजी ना है। अस्सलाम वालेकुम अठियारी से नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे, प्रोग्राम जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और अलीशा आ चुकी है, कहती अलीशा और किसी ने सच कहा है कि सुकून की बात करो तो वो अपने मनपसंद शख्स के अलावा और कहीं नहीं मिलता। अल्लाह साईं, ये आपने बड़ी अच्छी बात शेयर कर दी। और हमारे साथ बतूल हैं, बतूल मेमन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम बतूल मेमन फ्रॉम सिटी मटियारी से। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हम सारे साथ बैठकर आपका प्रोग्राम खुशी से सुनते हैं। और अम्मी ने आपको सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। और कहती हैं कि सारे सुनने वालों को भी सलाम, आपकी पूरी टीम को बतूल की तरफ से सलाम। सॉन्ग प्लीज चलाना निगत नाज का है, समझा थी तो के हीरो नंबर वन, मैं ॾिसां थी मिलियो त हलाए वठूं था तव्हांजे लाइ गानो। थैंक यू बतूली, तव्हां सां सगड़ मौजूद आहियो। और हमारे साथी जी महर इरफान सियाल साहब कहते हैं ग्रेट होस्टिंग में मार्जी, थैंक यू वेरी मच सर जी। और मोहम्मद जमान कहते हैं माय नेबर्स वेटिंग इन, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, आप उनको मशवरा दीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो दो दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो आप उन्हें बोलिए कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा लें, आप लगाना स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का मशवरा आप सबको दे सकते हैं, वो भी इजीली। और ये जना मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन की बात भी नहीं, कहीं जी स्किन भी खराब न थींदी, आई हर स्किन वारो माण्हू आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सके थो, तो तव्हां बि लाज़मी इस्तेमाल कयो। जी तव्हांखे ख़बर पई त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहे। अच्छा चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, सॼो कीअं आहियो, ख़ुशि आहियो, कीअं गुज़रियो जुमे जो ॾींहुं बस निंडरा कंदे गुज़रियो आहे। और फरवा गुल कहती आप ही अर्ज़ किया है, मैं खामोश हूं तो पत्थर ना समझ मुझे, मेरे दिल पे असर हुआ है किसी अपने की बात का, सही। और चाचा खालिद कहते हैं जबरदस्त आगाज डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो जो जबरदस्त कसीदे सा, थैंक यू वेरी मच चाचा। और मोहम्मद जमान कहते हैं दिस शो इज VIP, थैंक यू वेरी मच। अखलाक भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और महर इरफान सियाल साहब गुड आफ्टरनून आपको भी, वेलकम के साथ। इमरान अली उज्जैन हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम आरजे सिदरा मुस्कान, बिल्कुल ठीक ठाक है आप। हमें मोरी खान, सुल्तान मोरी खान तवां सां के जॉइन कयो आहे, सो थैंक यू थैंक यू। आई तवां जे एरिया में बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली थी कोन। और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, मुझे प्यारी भेण केड़ा हाल आहिनि, खुश आयो सफा, तव्हांजी प्यारी भेण खुश मजे में आहे। और बरकत रमादानी जमाली बलोच में सुन रहे हैं, बलोचिस्तान से भाई को वेलकम कहते हैं। अलीशा कहती है बिलीव मी यू आर इन माई माइंड ऑल द टाइम, यकीन कयो तव्हां हर वक्त मुझे ज़हन में रहंदा आहियो, अल्लाह साईं यकीन अची वियो अची वियो। और कहती है कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाए मेरे प्यारे भाई सदाम हुसैन चांडियो के लिए, ओके आई ट्राई। और फरवा कहती हैं आप ही आपके शो लाइक को शेयर कर दिया, बहुत शुक्रिया। चाचा कहते हैं कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गई, ये टॉपिक कैंसर। आईना दिखाया तो बुरा मान गए, अरे भाई आजकल के मुनाफकत भरे लोगों की सच्चाई है। और इनके अलावा फहीम तमाम भी टॉपिक जो जवाब दिनो आए, और अबू हनीफ अलबलोची तमाम भी टॉपिक जो जवाब दिनो आए। हिदायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, सबके मैसेजेस शामले प्रोग्राम रखूंगी, लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद जल्दी से वापसी आकर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में डिटेल्स से बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। और तब तक आप ऐसा कीजिए, नंबर्स के ऊपर रابطہ करती रहिए, और हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, और मुझे बताइए आप मुझे कहां से सुन रहे हैं, और आपके यहां डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं, मिलनी चाहिए बाबा मिलनी चाहिए, जल्दी जल्दी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और इस्तेमाल करते जाइए। ओके सो मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। नूरे चुल्ला बेबंदे मखूर बत्ती
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग। जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
2: नूरे जा पीउ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा।
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
8: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
9: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

सकरन मेहरापुर मातुली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं Whitish and D Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो सके कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए क्यों जरूरी हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं जरा आप लोगों के साथ खुला जो है ना बातें करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं जितनी भी बातें आप लोगों को बताती हूँ ना वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही और जनाब उससे और ज्यादा जो है ना आप लोगों को अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो लाजमी हमारा प्रोग्राम सुनकर आप समझ लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको कितने अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात तो आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये सबसे पहली बात मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना उसकी ये चीज होती है कि भाई आप उसे बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी केमिकल एड नहीं किया जाता जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सके। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है जनाब। ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर से जनाब अप्रूव किया हुआ फार्मूला है, स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने ही ये फार्मूला तैयार किया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स, माइक्रो बीट्स, अल्फा आरबुटीन, गॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, इस तरह की चीजें ऐड की गई हैं जो कि आप लोगों के प्रोडक्ट को जो ना मजीद इनहेंस करती है खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और आपके चेहरे को हमेशा के लिए चमकाने के लिए। अच्छा यहाँ पर मैं जो ये वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन का जिक्र करती हूँ ना तो इसका क्या काम है ये जरा इसकी जानिब आ जाते हैं। तो आप पूरे पाकिस्तान में अगर सर्च करते हैं कितने सारे प्रोडक्ट आपको नजर आते होंगे, उन तमाम प्रोडक्ट्स में से ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना ये दो से तीन प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए गए होंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन प्रोडक्ट्स में शामिल है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे पहली बात ये है कि भाई ये एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। दूसरा क्या कि स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए और उसके अलावा आपकी स्किन की हिफाजत भी करने के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात भी जनाब बिल्कुल वाजे आप लोगों को बता दी चलूँ कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आप लोगों को जनाब जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये टू इन वन फार्मूला है, यानी कि ये बाहर तो नाइट क्रीम है लेकिन ये जो आपको रिजल्ट देने वाली ना ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया। तो जैसे आपके घरों में शादियां हो रही हैं, आपकी अपनी शादी हो रही है, तो हर किसी को चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी जब स्किन नरमो मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, तो आपके चेहरे की जो रंगत है ना वो खुद ब खुद आपको अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके चेहरे पर ये प्रॉब्लम से जो ना वो दूर हो जाएंगे तो फिर आपकी स्किन तो वैसे ही ग्लो करती रहेगी, ऐसे ही ग्लो करते रहेंगे। तो मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कीजिए जनाब, और खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम हो, फ्रेश हो, और उनको ज्यादा प्रोडक्ट भी नीड नहीं होती, या फिर ऐसा नहीं होता कि नॉलेज नहीं होती उनको कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। तो इसीलिए आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाने के लिए, आपके खूबसूरत जल्द को जो है ना मजीद प्यारा बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप अपने रोजमर्रा की डेली के रूटीन में जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपनी जल्द को केयर देने के लिए आप रोजमर्रा ब्यूटी केयर स्किन के अंदर जो है उसका हिस्सा बना लीजिए, और सुबह अपनी रूटीन मुकम्मल करते हुए या फिर शाम दिन भर आपकी मसरूफियात की वजह से आपको ऐसा होता है कि भाई टाइम नहीं मिल पाता, हम सुबह को स्किन केयर नहीं कर पाते हैं तो चले रात को कर लेंगे, तो रात को बिल्कुल आप कीजिए। सबसे पहले ऐसा कीजिए अपना फेस वॉश करेंगे डी स्किन फेस वॉश से, क्योंकि डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है। फेस वॉश आप अच्छे से अपनी स्किन को जो है ना वो फेस वॉश करेंगे, अच्छे से चेहरे को क्लीन करेंगे, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे। और रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि रात के टाइम लगाई जाने वाला ये प्रोडक्ट है और नाइट क्रीम है, और आप लोगों के चेहरे के लिए टू इन वन फार्मूला है। तो अच्छा खासा अगर आपको रिजल्ट चाहिए, और हाँ ये चीज जरा मैं क्लियर करती चलूँ, क्योंकि मैंने जब ऐसे जिक्र किया कि आप लोगों को ये जो है ना फेशियल का रिजल्ट देने वाला है, तो कुछ लोगों के जहन में ये आता होगा कि जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको ऐसे मसाज के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे, क्या पता कि भाई ये फेशियल वाला रिजल्ट दे रही है तो इसको फेशियल की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है सिंपली अपना फेस वॉश करना है। डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, उसके बाद सुखा लेने के बाद चेहरा अच्छे से आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है। ये नाइट क्रीम है तो इसको आराम से प्यार से सुकून से उंगलियों की मदद से अपने चेहरे पर लगाइए, अपनी गर्दन पर लगाइए, अपने हाथों पैरों पर लगाइए, जहां भी आप लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली ये अपने चेहरे पर ही आप अप्लाई करते रहे, अपनी गर्दन पर भी
لگایا کریں, ہاتھوں پیروں پر بھی لگایا کریں, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے نکھار کی, گورے پن کی اور خوبصورتی کی, تو آپ وہاں وہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. اور سناؤ, بالکل سکون سے لگائیے, پیار سے لگائیے, اور بس لگانے کے بعد چھوڑ دیجیے, کریم خود آپ کی اسکن کے اندر جذب ہو جائے گی. آپ کی اسکن کے اندر جو اتنا جذب ہو جانے کے بعد آپ کو اچھے خاصے ریزلٹس بھی دیتی رہے گی, اور دو راتوں کے استعمال کے فوراً بعد ہی آپ کو اچھے سے ریزلٹس ملنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ تمام باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پورے پروگرام میں بتاتی رہوں گی. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو میرے ساتھ شیئر کیجیے, مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں. بالکل جناب, ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانے والے ہیں, کیونکہ بھائی آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر نہیں مل رہے, تو اس کے لیے آپ کو اویلیبل کرانے پڑیں گے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اویلیبل کرانے کے لیے آپ نمبرز کے اوپر رابطہ کیجیے. نمبرز کے اوپر رابطہ کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن کا فیس واش ہو, وہ اویلیبل کرا دیا جائے گا. تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں, چاہے آپ خواتین ہیں, ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے, اور اپنی خوبصورتی کو ذرا سیو کیجیے, کیونکہ خوبصورت ہونا اور خوبصورت رہنا دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی کریم خوبصورت تو بنا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرتی جا رہی ہے. تو خوبصورتی اور خوبصورتی ہوں گی کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ کرنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, جس کا آپ لوگ مجھے جواب دے رہے ہیں, اور ان لوگوں کو پتا چلے جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی سننا اسٹارٹ کیا ہے. تو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کی ہی ضرورت پڑتی ہے. ہاں جی بالکل, آپ نے صحیح سنا, آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. بالکل جی, ہمارے پروگرام کا ایسا بنتے جائیے, 888-1 پر ہمیں جوائن کیجیے, اور فیس بک پر ہمیں جوائن کیجیے, فیس بک کی پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے, اور مجھے بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں آ رہی ہوں جی آپ کے فیڈ بیکس کی جانب, لیکن یہاں پر یہ جو گانا لگایا نا, تھوڑا سا گانا بھی سن لیتے ہیں. آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.

भाई हमें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपने आप को डायमंड रिंग जो ना वो गिफ्ट कर चुके हैं। वो इंसान जैसे किसी की जरूरत ही नहीं है, और हम अपनी आप को महंगे महंगे तोहफे दे देते हैं। क्या बात है जी। और यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद है हिदायतुल्ला अहमदानी, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मुस्कान। आज इस शो में फरमाइश नहीं करूंगा, एक सॉन्ग है जो शाम वाले प्रोग्राम के लायक है, तो शाम को फरमाइश करूंगा। हाँ हाँ, ये ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इजी छोड़ दिया। और उनके अलावा हमारे साथ हैं जी यहाँ पर स्मार्टू गोपांग, कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं भी आ गया, आई एम लिसनिंग योर शो इन कंबर सिटी, वेरी नाइस वॉइस डियर, थैंक यू। अच्छा, जैन अली कहते हैं कि ऐब ढूंढोगे तो मिलेंगे ही, खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़ी है, सही बात है। अच्छा, मोहम्मद जमान टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। और अब्दुल गफार भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते सलामत रहो लाजवाब शो, मेल सी सी आप हमारे साथ मौजूद है भाईजान, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। इमरान अली उच्चन हमारे साथ ही, टॉपिक हाँ जी सही बात है, बहुत बढ़िया शुक्रिया। और स्मार्टू गोपांग आपका गाना लगाते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा जरा। अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि सुनने वालों को फकत फर्जी बयान लगता है, तेरा हर बोल मेरे दिल पर यहाँ लगता है, यहाँ। थैंक यू।

जी ये वो भला है जो समझ ना आए, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं हाथ तो मत है क्यों बाबा जेको जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी पाओ। इकबाल आशारी भाई हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से। इकबाल भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया। और स्मार्ट टू ठीक है आपका गाना लगाते हैं, सबर कहो बाबा सबर सबर सबर। मेहताब अली इंडर हमारे साथी, वालेकुम असलाम कहते हैं सिस्टर। आइए मेहताब अली फ्रॉम सुल्तानपुर केंट। मेहता भाई आपको वेलकम कहते हैं शुक्रिया के साथ। और फहीम भाई आपने लिंक शेयर कर दिए ठीक है, और आपने जवाब दिया है वो भी ठीक है। और जैन अली कहते हैं कि वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं, आपसे मोहब्बत ही आपसे मोहब्बत है। क्या बात है जी, शायरियों का दिन तो नहीं है ऐसे ठकाठक आप शायरियाँ भेजे जा रहे हैं। और दिया परी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम दिया। अच्छा दिया कहती हैं कैसी हो आप, मैं ठीक हूँ तुम बताओ। कहती हैं कि हम भी आ गए आपके शो में थोड़ी मुस्कान लेने, उम्मीद कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। प्लीज प्ले निगत मेला नसीब बन जा डेडिकेट आपी आयत आपी अक्सा आपी नूर हिरा एंड डेविल। ओके समझ गए। अच्छा जावेद चांदी हमारे साथ कहते हैं कि किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। आए हाय आए हाय ऐसी आदतें। अच्छा चाचा ठीक है तव्हांजी लिंक असां ॾिसी वरिती आहे। इनके कौन छड़ींदासी बाबा, प्ले कंदासी प्ले कंदासी। और हमारे साथ हैं जी आद जरवार भाई, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आद भाई, ठीक ठाक है। और मुझे बताएं आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पे मिल रही है या फिर नहीं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर फर्ज कर लीजिए नहीं मिल रही तो उसके लिए आपको नंबर बताया है जिस नंबर के ऊपर आप राबता करके इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल भी करा सकते हैं। यस ये भी ऑफर है आप लोगों के लिए कि बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं, वहां से जाकर इजीली आप परचेज कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई हम सिटी जाएंगे तो परचेज करेंगे, अलाए काथे मिले थी अलाए काथा मिलंदी, इहो तव्हां बिल्कुल भी न चओ। बस तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो, नंबर ते राबतो कयो ऐं ठक तव्हांजे सिटी में तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वेंदी।

अदाद भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में है। और फहीम भाई कहते हैं अदाद, जुमे वाले दिन आपने नींद की, अब संडे वाले दिन हमारी छुट्टी है, कल हम सारा दिन नींद करके शाम को घूमेंगे। सैया बाबा एंजॉय करो जिंदगी, एक दफो तो मिली है। अनवर भाई कहते हैं कि सलाम अदी, थर्सडे शाम वाले प्रोग्राम जी पोस्ट अपलोड नहीं हुई, अच्छा फरमाइशू हलू, हाँ हलायू हुई शायद। अच्छा यो थोड़ो मसलो आए तो जेका पोस्ट आ ना अध में रुकी जी वने थी, पर जडी मु चेक कयो तो पोस्ट जेका है ना वा सडी, मतलब प्रोग्राम सजो कंप्लीट हले पयो। पर यो वात होते लाइव तां के कमेंट्स ता नथा करे सको, को ऑप्शन वगैरह ता वटना है, पर यो वात प्रोग्राम ता जला पूरो आहे, अगर ता मतलब उधन चाहे तो पूरो प्रोग्राम बधी सको ता। सो ये मसला है, पता नहीं ये क्या है, तो इसको जरा हम सॉल्व करवाएंगे। और आप बस ऐसा कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अगर आप कर रहे हैं तो मुझे बताएं आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं।

0: मेरी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। किशोर भाई हमारे साथ कहते सलाम अदा स्मार्ट आयो आ अज थदो थदो पियंदो सही आ हाजिर हाजिर जूस घुरायूं था
1: मेरा एतबार करना सिंड्रेला
0: कड़ो जूस पींदो अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हाथों पैरों और गर्दन पर लगाने से तो एक दिन में एक डब्बी खत्म हो जाएगी डी स्किन क्रीम की फेस पर लगाना ठीक रहेगा अरे बाबा पोयो थींदो न तव्हांजो चेहरो जेको आहे उहो अलॻि नज़र ईंदो तव्हांजी गर्दन तव्हांजा हथ पेर जेके अलॻि नज़र ईंदा ऐं माण्हू चवंदा आहिनि सतरंगी छो थी विया आहियो इन करे तव्हां हथनि पेरनि ते गर्दन ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो कोन हिकु ॾींहं में ख़तमु थींदी एॾी कंजूसी बि सुठी न आहे तव्हां ॾिठो हूंदो खोड़ सारा माण्हू सतरंगी हूंदा आहिनि मूं हिकिड़ो वरी हथ हिकिड़ो इहो सही न आहे बाबा सही न आहे पाण सां गदारी
1: आहे
0: हांजी एतबार करी लेते चलो क्या याद करो वसीम अली हमारे साथ मौजूद है वेलकम अनवर भाई कहते हैं कि उससे खोने से डरता था बहुत रोने से डरता था फिर एक दिन ये समझ आया कि रोया उनको जाता है बिछड़े जो मुकद्दर से कि खोया उनको जाता है जो हासिल हो मयसर हो जो दानस्ता बिछड़ जाए उसे रोया नहीं करते जिसे पाया नहीं अब तक उसे खोया नहीं करते वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह

जानते सही बात है, सब कुछ इग्नोर करो पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर ना ना ना ना ना ना ना, ये सही नहीं होगा। हाजिर यो हुकुम कर। मोहम्मद जुमान भाई कहते हैं बुआ जी ही कलाम तो बुधायो, मां दिसां थी मिली हो तो हलाए वठूंदा ठीक आहे। आहद भाई कहते हैं टॉपिक किसी चीज को देखने के लिए। ओके भाई ओके ओके। नजीर भाई हमें सुन रहे बलूचिस्तान से, भाईजान आपको भी वेलकम कहते हैं। दिया कहती है कि ऐसी गर्मी में बेस्टीज भी अचानक आ जाए तो खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि किचन में जाने के लिए 100 दफा सोचना पड़ता है। ऊपर से मस्के वो डिश तुम्हारे हाथ की आए हाय। हाँ बाबा ये मस्का जगह न ॾाढा आणंदियूं आहिनि, पर इहा मतलब मूंखे लॻंदो आहे ॾुख जी ॻाल्हि। उनके चो अचो तो वह जेका डिश तांके वणंदी आहे जेका मुंजी फेवरेट आहे वह ठाहे अचजो, बाकी तां ॿाहिरां घुराए वठो। बेकरी ज़िंदाबाद।

कैसी हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं, आपको वेलकम कहते हैं। नजीर भाई कहते हैं कि बेसकूनी का असल सबब हमारी लामहदूद ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। जब इंसान की तमाम तमन्नाएं और ख्वाहिशात अल्लाह ताला के अहकाम और रजा के ताबे हो जाती हैं तो सुकून और इत्मीनान जो है ना वो हासिल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और चाचा कहते हैं कि किसने दी भाई, देने वाली बात तो थी नहीं ना। मैंने कहा मैंने अपने आप को गिफ्ट कर दी है, किसी और का इंतजार क्यों करे भला, कि वो आएंगे डायमंड रिंग देंगे। आए हाय, हम खुद को गिफ्ट कर देते हैं। और कर दी। यस।

आई लीव। चलो इते तहां वे हो मां वणा थी न्यूज़ ब्रेक जी तरफ उना का पे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा आप से जल्दी मोटी तमारी अचे थी आए ते बैठा हो जो साइन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कजो ठीक आ ओही वणी ओही मोटू ता सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड इन की प्लेस ने व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
5: भारत कंहिं ग़लतफ़हमीअ जो शिकार न रहे पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारे कंहिंखे बि कोशिश खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो गडि॒यल क़ौमनि जे जनरल असेंबलीअ खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि विरहाईंदियूं न आहिनि सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी आवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगी जी ज़मानत आहे भारत पारां सिंतास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि क़ानूनी जवाज़ नाहे कश्मीर पाकिस्तान जे शहर रग आहे ऐं रहंदो कश्मीरनि जी सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखी वेंदी पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर हिते जे अमुन लाइ आहे
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News

0: मालवन भारन लाए खुशखबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान डोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐ गोश्त वधाए अवां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐ जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 0300 3105109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000338569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100।

बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं। तो अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइए जल्दी से, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो ये प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं ये सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, खूबसूरती में इजाफा होगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल जी आपके चेहरे पर लाएगी ऐसा निखार के देखकर आप खुद ही कहेंगे कि आए हाय, हम पहले सदरा की बात क्यों नहीं मान रहे थे। खैर, अभी भी कोई देर नहीं हुई, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं। एक और मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि ये होने वाली है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, वो क्रीमें नहीं लगा पाते, कहते भाई हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, क्रीमें पता नहीं उनको कुछ उलझन सी होती है क्रीमें लगाने से। लेकिन ऐसा है कि अगर आप क्रीमें नहीं लगा पाते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये एक ऐसी क्रीम है जो कि ऐसे आपकी स्किन के ऊपर चिपचिपा भी आपको फील नहीं करवाने देगी, बस आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है खुद ही। और ये इतना मतलब फार्मूला इतना मस्त जबरदस्त है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई क्या ही बात है, ये क्या ही बना दिया है। और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये चीज आप याद रखिएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना,

बिल्कुल सुना, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो फेशियल के रिजल्ट्स मिलने वाले, और महंगा सा फेशियल जो कि भैया आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा वाला सीने कि भैया आप कहते हैं घंटों कौन बैठे सैलून में और कौन एतरो खफो कराए बाबा इन लाइ तवा बस राजो सुमण खां पहिरीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं पोइ ॾिसो कमालात त छा तव्हांखे मिले थी खूबसूरती जेका तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मिलंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद। भई मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां हिकिड़ी ॻाल्हि, त जॾहिं तव्हां मार्केट में वेंदा न, तव्हां बेशक एॾा सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कया हूंदा या एॾा सारा प्रोडक्ट तव्हांखे इम्प्रेस करे चुका हूंदा जॾहिं तव्हां वेंदा हूंदा मार्केट, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा न, हिन में ॻाल्हि ई हिकिड़ी अलॻि आहे। छो त जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमाल कंदा त हिन जे अंदरि जेको आहे न वाइटामिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, अल्फारबुटीना, कोजिक एसिड आहे, ग्लूटाथायोन आहे, ऐं सिर्फ़ ॿ रातिन जे इस्तेमाल में तव्हांखे ॾींदी जनाब सफ़ा भलो रिज़ल्ट, ऐं रिज़ल्ट बि अहिड़ो जेको हमेशह तव्हांजे चहिरे ते बरकरार रहण वारो आहे। ऐं ईअं न त तव्हां ॾिठो हूंदो न कुझु प्रोडक्ट अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके भई प्रोडक्ट अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु छॾे ॾींदा आहियो त तव्हांखे जेके रिज़ल्ट मिलंदा आहिनि उहे बि ख़तम थी वेंदा आहिनि, तव्हांजा उबतो तव्हांजी स्किन ते इलाही सारा जेके न उहे निशानात अची वेंदा आहिनि, या फिर इलाही तव्हांजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे। त डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे रिज़ल्ट जेके मिलंदा उहे हमेशह तव्हांजे चहिरे ते मौजूदु हूंदा, बरकरार हूंदा। त अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां बेशक कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु हर स्किन जे मथां करे सघिजे थो, चाहे तव्हांजी स्किन केॾी ई सेंसिटिव छो न हुजे, छो त हीउ मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। नो टेंशन बाबा, बेफ़िक्र थी करे इस्तेमालु कयो, मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई लॻाए सघे थो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां वठो न, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डॿी ते हिकु डॉक्टर माई जो फोटो अथव, ऐं डॉक्टर माई जो फोटो ॾिसी करे तव्हां मतिलबु जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे वठी सघो था। ॾाढी वी आई पी सुहिणी डॉक्टर माई आहे, सो अगरि तव्हां वठो त इहो फोटो तव्हां लाज़मी ॾिजो, ईअं न त दुकानदार तव्हांखे बाबा कोई ॿी क्रीम ॾे ऐं चवे हीअ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अथव, तव्हांखे पढ़णु न ईंदो हुजे या फिर तव्हां वीचारा मासूम आहियो। त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहा निशानी ॾिसी वठो ऐं सम्झी वठो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे, सम्झी विया। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां इज़ीली पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई करे सघो था। उन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां वठो त हुन सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश लाज़मी वठिजो, फेस वॉश वठण न विसारींदा छो त फेस वॉश जेको यूज़ आहे न तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद साबित रहंदो। ऐं जॾहिं बि फेस वॉश तव्हां इस्तेमालु कयो त इन चीज़ जी बि तव्हांखे मतिलबु गारंटी आहे त तव्हांजे चहिरे ते जेके निशानात आहिनि, एक्नी आहिनि या खोड़ सारा जेके प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि उहे सभु ख़तम थींदा। ऐं डी स्किन फेस वॉश जेको आहे उहो हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयारु थियल आहे, हिन जे अंदरि हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड थियल आहे, ऐं हीउ जेको सीरम हूंदो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे। जीअं तव्हांजी स्किन जे लाइ कुझु चीज़ूं ज़रूरी हूंदियूं न, बिल्कुलु वेसे ई तव्हांजी स्किन जे लाइ हाइलोरोनिक जेको एसिड आहे न इहो बि ज़रूरी आहे। सो तव्हां अगरि इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हांखे ख़बर हुजे त डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे इहो तव्हांजी स्किन जी अंदरि जेको आहे न अंदरि ताईं वञी तव्हांजी स्किन खे डीपली क्लीन कंदो आहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदो आहे, ऐं तव्हांजी स्किन खे हमेशह मॉइस्चराइज़ रखंदो आहे। अगरि तव्हां इलाही साबुण लॻाया आहिनि या तव्हां इलाही सारा फेस वॉश ट्राए कया आहिनि पर तव्हांजी स्किन जेका हमेशह रुखी सुखी हूंदी आहे, या तव्हांजी स्किन जेका आहे न उहा ईअं तव्हांखे महसूसु कराईंदो त बाबा इलाही जल्दी ऑयल निकिरी अचे थो चहिरे ते, तव्हां इन जी वजह सां घड़ी घड़ी तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कंदा आहियो, त घड़ी घड़ी फेस वॉश करण खां थोरो अवॉइड कयो ऐं तव्हां बसि डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो। ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए कंदा न, तव्हांजी स्किन ते जेको एक्स्ट्रा ऑयल हूंदो आहे उहो बि ख़तम थी वेंदो, ऐं तव्हांजी स्किन हमेशह मॉइस्चराइज़ रहंदी, ऐं तव्हां पाण महसूसु कंदा था।

बाकी वाजी शइ इस्तेमालु करे रहिया आहिनि, जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे या बाबा इलाही प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, उहो डी स्किन फेस वॉश बि अगरि तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे महसूसु थींदो बाबा वाक़ई ही प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहे. ऐं बिल्कुलु इहा चीज़ तव्हांखे मतिलबु ई हाणे ज़हन में ईंदी हूंदी त अगरि प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि त महांगा मिलंदा हूंदा. बिल्कुलु महांगा न आहिनि, मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि. सो तव्हां बि इस्तेमालु करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश, मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिलनि पिया बाबा. सो वञो ऐं वठी अचो, ट्राई करे ॾिसो. ट्राई करण में छा ई वञे थो भला, ट्राई कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाकई बाबा कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि सही आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी. ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो, शेयर कंदा कयो, छो त शेयरिंग इज़ केयरिंग हूंदी आहे. अच्छा, मूं तव्हां खां सवाल पुछो आहे त किस चीज़ को देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इहो तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा. ऐं गॾो गॾु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था त तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो. ऐं हा, ॿी ॻाल्हि तव्हांखे नंबर ॿुधायां जेको तव्हां डायल करियो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल बि कराए सघो था. सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो था त बाबा तव्हांखे डायल करणो आहे 0332738439 ॿुड़ी 332 73 84 309 ऐं ॿियो नंबर आहे 0312502590 ॿुड़ी 912525907. ही नंबर डायल कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हां इस्तेमालु कयो या अञा ताईं कोन कयो. न कयो त छो न कयो, ऐं कयो त पोइ तव्हांखे रिज़ल्ट कहिड़ा मिलिया आहिनि. अच्छा, जेके बि सोणा सोणा भाइर भेनर असांखे ॿुधनि पिया, ही प्रोडक्ट तव्हां सभिनी जे लाइ आहिनि. सो इस्तेमालु करे मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो जे मूंखे ख़बर पए. ऐं जॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा आहियो त भाॼी असांखे अहिड़ो रिज़ल्ट मिलियो आहे, हेतिरो असांखे फ़ाइदो पहुतो आहे, त यकीन कयो मूंखे इलाही ख़ुशी थींदी आहे. सो तव्हां अगरि इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो.

सुनिए जी, बहुत ही प्यारा गाना, हम एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं। इस गाने की फरमाइश हमें जेन ने कर दी थी, तो जेन ये गाना हम सुनेंगे आप लोगों के साथ साथ। और दर्दे दिल कहती है कि अगर तकलीफ देने वालों को ये मालूम हो जाता कि हमारे दिलों में उनके लिए कितनी खैर है, तो वो कभी ऐसा ना करते और वो फिर ज्यादा करते। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर उन्होंने खबर पहुंची हुई तो असां जे दिल में उन्हें केतरो खैर आ, तो असांखे अञा वधीक तकलीफ़ ॾींदा। इहा चीज़ तव्हां हमेशह यादि रखंदा कयो, कोई कोई बि न दुनिया में शायदि कंहिंजो अहसासु नाहे कंदो।

0: आते भाई, ये बहुत ही प्यारा गाना है जो कि हम एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमानुल्ला दल हमारे साथ मौजूद है। अमानुल्ला भाई कहते हैं, इट्स मी अमानुल्ला फ्रॉम राजू खानानी। ओके, अगर मैं सही नहीं रीड करी तो माजरत करते हैं। ठीक हूँ, आप बताएं अमानुल्ला भाई आप कैसे हैं? और अहद भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक हो गया। और गुलाब जो गुल कहते हैं, अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। हाँ, अच्छा, उन खां अलावा आहत भाई तहां गाने जी फरमाइश कई, मां ॾिसां थी तव्हां जी पसंद जो गानो बि हलाए वठूं था। हिदायतुल्ला कहंदे कि अदा बारात नहीं आई, कल आनी थी, लेकिन अब वो 4 तारीख को आएगी, तू समझा। ये ऐसा क्यों भला, ये तो इंडियन शादियों के जैसा सीन हो गया। चलें जी। और फहीम भाई कहते हैं कि
1: गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से, सुन ले तेरी हर।
0: ऐसा लगते हैं कि पर्ची वयो शिकायत जो दफ्तर या फहीम सुधरी वयो आहे, हुन मोट में मुर्गी फरमायो, चरण जी शिकायत केर करे। आई हाय, अच्छा, अनवर भाई कहते हैं टॉपिक बुधायो, ज़हानत चेक कजे सिदरा जी प्रोग्राम में। टॉपिक मुझे ख्याल में आने तक बुद्धि बढ़तो हूँ। मुगल उमरानी भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं। और निदड़ी हमारे साथ ही कहती हैं, शलावा है शलावा, निदड़ी इज
1: किसी जुबान पे यूं ऐसे को
0: बैक होता है, चरी पगली बैक बैक। कहती है बचना है हसीनो, निदा आ गई। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बच रहे हम। और उनके अलावा दिया कहती है सिंड्रेला। हाँ जी। निदड़ी कहती है कि बुखार को चकमा देकर आ गई मैं, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। और कहती है मासूमी का मौसमी का जूस, सही सही सही सही, लिखा तो सही करो। और उनके अलावा ओके, चाचा खालिद बहुत शुक्रिया आपका। और अनवर भाई कहते हैं कि कड़ी कड़ी अमां जो आवाज़ स्पीड में हूंदो आहे, त ईअं लॻंदो आहे प्रोग्राम रिकॉर्ड पियो लॻे। रिकॉर्डेड प्रोग्राम बि त इहो ई हूंदो आहे जेको हीअं मतिलबु रोज़ कंदी आहियां। इहो करणो त न पवंदो आहे मूंखे अलॻि सां रिकॉर्ड, इहो बि इहो ई प्रोग्राम हूंदो आहे जेको डेली कंदा आहियूं।

हाँ बिल्कुल अनवर भाई सही था, जो रंग जेको भी हुए पर एक रंग हुए इन लाइन चवानी तो सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पानी चेहरे ते गर्दन ते हथन पेरन ते जी तांगे को दिसे त ये न चाहे त बाबा यो वरी छा सतरंगी छोथा घुमदा वतो थी तमा इस्तेमाल कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका तांगे रिजल्ट दीनी सफा भलो वीआईपी ए तमा लश पश थी वेंदा। अच्छा निदड़ी कहती है के सलाम टू सायमा मीर, मैंने सुना उसने मुझे याद किया था उस दिन और उसको बोला अच्छा कहती है उसको बोलो अब मैं फिरोज की फैन नहीं हूँ। अरे भाई इतना जल्दी आपने पार्टी बदल ली, कहती अब आतिश की फैन हूँ। अब सायमा को कैसे पता कि आतिश कौन है।

0: हाँ जी हो बहुत अच्छा बहुत
1: अच्छा।
0: अली पोस्ट के लाके शेयर करो था वो कौन है
1: तो लिखत लिखा तभी रोई पवा दे तार कया तभी रोई पवा के ससुर सल्या तभी रोई।
0: अच्छा निजाम भट्टी कादरी भाई में सुन रहे हैं निजाम भट्टी कादरी भाई तहां जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पर और स्मार्टू कहते हैं कि अच्छा गानो मा दिसांती हलाई वठूं था तवां जो और इन का अलावा गुलाब जो गुल कहते हैं
1: पूरी पयो पंध करण मुझे मजबूरी पयो पंध करण मुझे मजबूरी।
0: हां बाबा डाडू दुखियो डाडू दुखियो।

अजय किशोर भाई कहते कि तू सिर्फ पानी में पेन घुमाए दे जहां मां लिखा छा पयो लिख जी अलाए छा वयो मां वो ही डिसी करे हेरन थी वियम तो तमा वाकई या मो बताया मेरे वो जरा बात समझ नहीं आई थी। हजार भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई। और फरवा भी हमारे साथ नाचो दे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुखे समझ न आयो पर एतरो चवंदस तोखे दिसण लाए तो जड़ी नजर हुजन जरूरी आए।

इंसान बस मजबूर न हुजे मां चवंदी आहियां सभु कुझु हुजे बसि इंसान मजबूर न हुजे मजबूरी जेका न लाइ छा छा कराए छॾींदी आहे ऐं बिल्कुलु जी अगरि तव्हां बि ख़ूबसूरत थियणु चाहियो था ख़ूबसूरत थियणु तव्हांजी मजबूरी आहे या मजबूरी नाहे तभी तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजी ख़ूबसूरती में सफ़ा इज़ाफ़ो आणे छॾींदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां चाहे मर्द हज़रात आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा ऐं सोणा थी वञो

जी गोठ मोमन तयबु थेबु थेबु का हबीब अल्लाह थेबु भाई के दी तमान जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमा के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा आई तमा वरी गाने जी फरमाइश कया मा देसानी ता जो गानो हलाए बैठू था न तवरी शाम वारो गानो यो फरमाइश करते था शाम वारे प्रोग्राम में बुधना से अब्दुल्ला महर भाई हमें सुन रहे मीरपुर खास से कहते हैं कि दी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूं आपको सलाम सॉन्ग हो मेरा चन्ना का देसानी भाऊ बिल्कुल ताजी पसंद हलायूं था आई बहुत शुक्रिया ऐसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए रसूलाबाद का आबिद हुसैन शबानी भाई वालेकुम अस्सलाम अदी अच्छा तमा जवाब दिनो आए सही सही टॉपिक जो ओके हो गया जी चाचा खाले तमा भी टॉपिक ते जवाब दिनो आए तमा गानो भी प्लस में लिखी सडवाए हलड़ी तरक्की।

अच्छा ही सॉन्ग असा के डेडिकेट अच्छा मतलब फरमाइश की कयो डेडिकेट भी कयो आई प्लस में सो ये हमारे साथ है सलाम सिद्रा केड़ा हाल आहिन दुआ है हमेशा सलामत हो जो शो नाइस वॉइस नाइस सॉन्ग प्ले कजो तू जो शहर डसन मुजी मजबूरी मुमताज लाशारी डेडिकेट यू फ्रॉम योर लिसनर रोफी रोफी हमें सुन रहे हैं जी रोफी को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया वैसे रोफी आप प्रोग्राम में मतलब कम कम शामिल क्यों होते हैं आप हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं तो आपको वेलकम कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है और ये हमारे साथ कहते चाचा खालिद को सलाम मंजूर अली खास के लिए झंडो मरी खां मंजूर भाई तांजो मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पया और ये मौजूद है हमारे साथ हबीबुला थेबू सॉन्ग बुधराय जो हाजिर बा सब्र तक करे मुनवर मुगल भाई हमारे साथ कहते मीरपुर खास से चाचा खालिद के लिए फैमिली पैक बनवा दो डी स्किन का 2.5 किलो वाला डब्बा हम भी लेंगे 2.5 किलो वाला डब्बा हलड़ी विशगाल में दम आए 2.5 किलो जो डब्बो हो जाए तो सब बस लगाइन फैमिली पैक हुए का टेंशन वैसे ये डिठो वे तो एडो वो पैक होंद तो वही मानू चंदा बाबा हाँ असा नंढड़ी नंढड़ी क्रीमियों नंढड़ा डब्बा टो इन कर नंढड़ा नंढड़ा डब्बा जो आसानी थे तवे तुम घर जो एक भाती वो पर्सनल लगाए पर्सनल एक वी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए बस वो लगाए ना ये सुना सुना रहा कोई भी कें क्रीम न खणे कोई भी कें फेस वॉश न खणे तुम सब वो सब लगा चाचे के चौं था बाबा चाचा तुम अलग से डब्बी वो या सो जो पैक इन ना फैमिली पैक तुम वो वी सो अलग से 2.5 किलो पैक जी जरूरत ही कोने का सो तुम इस्तेमाल कंदा रहो ही खूबसूरत इंदा रहो इते टाइम थे बाबा वठूं था नंडड़ा ब्रेक वो जल्दी मोटी चांदी तांडी एकड़ी गाल बुधाई थी मोटी अच्छे इते बैठा हो जुमा ओही मोटांदी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's
1: 2:30 PM. सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला और बीएड अढ़ाई साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकडे तवां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे तही बेहतरीन मौक्यो हथन मां न वणायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सा लागापियल केतरिन ई नौकरिन लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 AM to 5 PM ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000-27234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94
5: सकता है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो कि आप लोग पहले से जानते हैं कि भाई हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2-in-1 फार्मूला है यानी कि ये बजाहिर तो एक नाइट क्रीम है लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और जनाब सबसे बेहतरीन बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई भी टेंशन की बात ही नहीं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम लगाएंगे तो क्या कोई मसला तो नहीं हो सकता है स्किन सेंसिटिव है नहीं लगा पाते हैं ब्ला ब्ला इस तरह की कोई भी चीजें अगर आपके जहन में है तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा कर ये तमाम चीजें जो है अपने जहन से आउट कीजिए अपनी खूबसूरती को जरा निखारने दीजिए और खूबसूरती को जरा हाय हाय कीजिए और तमाम प्रॉब्लम्स को बाय बाय कीजिए अनिखा अलावा तमाम मर्द हजरात आयो खवातीन आयो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सके तो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कोन थी आहे अञा ताईं त बाबा छा था कयो तव्हां अवेलेबल छो नथा करायो बिल्कुल जी अवेलेबल करायो रोता वनी आसानी से तां परचेज कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा गड तां के डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रयो आहे बाबा सई देर न कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो डी स्किन जो फेस वॉश भी वठी अचो आई खूबसूरती जी मामले में नो कॉम्प्रोमाइज बाबा ता सब ही लगाए सको था सब ही खूबसूरत थी सको था सबने के हक आहे खूबसूरत दिखाण जो खूबसूरती के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और चमकते जाइए अगर तुम चो था बाबा तेजी में कोई असा भलो प्रोडक्ट रिजल्ट दे जदी तेजी के रिजल्ट के चक्कर में तुम केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे से इस्तेमाल कह तो उन यकीन तक इलाही सारा नुकसान पहुंचा है पर जी तट कोई मेडिकेटेड फार्मूलो है जल्दी में रिजल्ट दे तो रिजल्ट भी वो हमेशा तुम्हारे चेहरे से बरकरार रहे तुम्हारे घर में कोई शादी या फिर तुम पांच शादी थियणियों तो शादी न शादी थियणी है तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है ना बाबा इन जे अंदर वाइटमिन ई बीट्स आ माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जी एडिशन थियल है तो ये जेके चीजों होंदियो है ये महंगन महंगन फेशियल जी अंदर एड थियल होंदियो है जेके खवातीन मतलब पार्लर वारी मुखे बुधंदी होंदो उनन के बिल्कुल खबर होंदी त ये वाइटमिन ई बीट्स आई माइक्रो बीट्स जेके होंदा ना केतरा इंपॉर्टेंट होंदा है तवाजे चेहरे ते निखार देने जे लाए या तवाजे स्किन के ब्राइट करने जे लाए सो तवाजे लाए 2-in-1 फार्मूलो है जेके पार्लर जो अदियो असा के बुधन पयो या जेके पार्लर जो छोकरियों असा के बदन पर वे भी बाबा पांजे तमा कस्टमर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई करे सगो था उनन के डस्ट दे सगो था तमा के एतरो भलो मतलब जो रिस्पांस मिलंदो ता पाणी चोंदा वाह सई वाह तरकिया बियो छा आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा अगर ता के डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहयो आहे ता वो भी लाजमी वेट जो वो इग्नोर न कजो उन के इग्नोर न कयो बाबा आई अगर तमा जे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी अवेलेबल आहे पर फेस वॉश कोन तो मिले ता तमा नंबर्स ते राबतो करे फेस वॉश के भी अवेलेबल कराए छड़ो जे बई चीजो मिलन आई ता मन्यो बस परचेज करे अचो आई हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी या निशानी आए ता बाबा इन जे मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए आई तमा नालो डिसी करे आई फोटो डिसी करे पोई ता सही प्रोडक्ट परचेज कजो सही प्रोडक्ट परचेज करे निकालो से होशियार रहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते रहिए।

से मेला नसीब बन जाते हैं, डायल करे बैठो 03-12-50-25-9-07 बारह पंजाह पंजवी नव सौ सत्त बुड़ी टे एक ब पंज जीरो ब पंज नव बुड़ी सत विच में जीरो अची वो पर इग्नोर करो ना बुड़ी लिख जो 03-273-8-4309 बुड़ी 332 है त्रेहत्तर चौरासी 309 बुड़ी टे टे ब सत टे अठ चार टे बुड़ी नव ही नंबर साइन राबतो कयो ए पांजे करीबी जनरल स्टोर से टी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड टी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल करायो खूबसूरत सबुथियन बाबा तहां जो पीछे रेजी वणो ता भी खूबसूरत थयो ए खूबसूरती जो दुनिया में कदम रखो ए चो यस असा भी इस्तेमाल कंदा आयो टी स्किन ब्यूटी क्रीम

अच्छा अमानुल्लाह भाई, आपको जो भी डिटेल्स मतलब जाननी हो ना कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं या प्राइस क्या है या हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, आप उनको अपने सिटी का नाम बताइएगा। तो नंबर्स के ऊपर राता कीजिए, जो नंबर अभी आपको बताया उनके ऊपर राता कीजिए, आपको वो तमाम डिटेल जो है ना वो दे देंगे। तो आप जरूर नंबर्स के ऊपर राता कीजिएगा, ठीक है।

अच्छा आहाद भाई लिखते हैं कि मशहूर होने का शौक नहीं हमें, बस आप हमें जानते हैं इतना काफी है। हाओ सही था चो। और नदड़ी कहती है कि बस मैं ही सबका ख्याल करती हूँ इस दुनिया में। हाँ सही थी जय माँ भी हम और तुम। अच्छा स्मार्टू लिखते हैं कि तुम्हें अरे ये शायरी मत भजी भाई। एडवोकेट कामरान खान साकी हमारे साथ कहते हेलो सिस्टर नाइस यू, थैंक यू वेरी मच एडवोकेट भाई साहब। और उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे शाम को चुप करके सुनने देना सॉन्ग, अभी तो चुप नहीं करोगी तो इस वजह से शाम का बोलो। हाँ हाँ शाम वाले प्रोग्राम में तांगे फुल गाना बुधराई सोते भले फरमाइश करना गयो। और अमानुल्लाह भाई कहते हमारे शहर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करवाता हूँ। बिल्कुल जी अवेलेबल कराइए, जो नंबर आपको बताया उसके ऊपर लाजमी राब्ता कीजिएगा ठीक है। अच्छा सिया सिया वाले गाने जो सिख लगी था वह छा भला किशोर भाई हुकुम कयो।

अच्छा 14 हिते फेक माण्हू एतिरा आहिनि समझ नथो अचे त असल में आहे के असल सिर्फ़ मां आहियां Yes, the one and only. I want to say, bhai, ma enjoy thi kya really in a cheese game. Bhai, aap lage haath post ko like aur share bhi kar diya kare jo fake log aa rahe. हाँ जी पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी करते रहे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों को बहुत खूबसूरत और प्यारा भी बना देगा तो ये जो आप फेक फेक बनकर आते हैं ना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए आपकी खूबसूरती में इजाफा आ जाएगा और खूबसूरत बनने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ खवातीन ही इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मर्द हजरात भी लगाइए खवातीन भी लगाइए और खूबसूरती की दुनिया में छा जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी चीज है जनाब की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिकाए ही बाबा तवां जला मेडिकेटेड फार्मूलो है यानी कि डॉक्टर्स मिली करे इन प्रोडक्ट है तैयार कयो आहे त को भी टेंशन जी गाल कोने का त ही प्रोडक्ट असा लगाए सगु था या नथा लगाए सगु असा जी स्किन सेंसिटिव आहे त असा के मतलब क्रीम सूट न कंदियो आहे त तमा सब लगाए सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो वटी तलब कयो आई पाजे करीबी जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल कराए

अच्छा इस गाने की भी फरमाइश थी तो भाई मैंने सोचा इसको भी सुनी लेते हैं। और मोहम्मद जमान भाई जान आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। भाई झंडो मरिए में चाचो सनो फेमस थी वो आहे अलाइ छु मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद है, वेलकम मोहसिन। नन्ना सलाम डिना हुआ इससे मुबारक को ना मुबारक थी वही बस एक दफो डिबी आई। हजार खान भाई आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। बतूल कहती हैं आज का टॉपिक क्या था फिर से बताएं प्लीज, और मेरा क्या सॉन्ग मिला जी? नहीं आपका गाना मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने निगत का एक और गाना प्ले कर दिया। और टॉपिक ये था कि आप मुझे बताएं कि वो क्या चीज है जिसे देखने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ती है।

जी और न खां अलावा तव पोस्ट के लाके शेयर कयो कोन दर्दितल कहती कि डी स्किन फेस वॉश लेकर आई हूं चंदा क्या बात चंदा की बात कैसे ना मानती मां सदको वना सोणी ता आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता पेरिया का इस्तेमाल कयो पया ई न

जी क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्यारा गाना। और यहाँ पर टाइम की जरा किल्लत है तो आप लोगों के मैसेजेस जरा मैं खत्म कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हैं जी खालिद अहमद पिताफी। खालिद अहमद पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं जी घोटकी से, आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। मजहर अली हमें सुन रहे हैं शहदाद कोट से, आपको भी वेलकम हो गया। और निजाम भट्टी कादरी भाई कहते हैं वाह नाइस शो, थैंक यू, जबरदस्त जियो, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अच्छा चाचा कहते हैं सिंधी अच्छी बोलती हैं आप। हाँ चाचा तव्हांजो गानो असां पंज बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधंदा सिंह, ठीक आहे। और जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और यहाँ पर स्मार्टो कहते हैं अच्छा सही अच्छा सही है। और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी हमारा नहीं अभी तक तो नहीं आया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप भी, और नदड़ी आप भी, सब सब सब। अब्दुल्ला अली हमारे साथ कहते हैं अकरी चोदकी का अली गुलाबशर, नियाज मोहम्मद, इमरान अब्दुल बाकी, आई अब्दुल्ला माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम आई, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला भाई तव्हांजो मोहबत वाइन प्रोग्राम के पसंद कयो पिया, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो। दरी निजात सुनी आज रात। और ये जी हमने एक और गाना लगा लिया है, ये गाना होगा मंजूर सखिरानी की आवाज में, ये मतलब बस सुनिएगा, पता नहीं क्यों मुझे ये गाना थोड़ा अजीब लग रहा था। सोचा चलो लगा ही लेते हैं। उनके अलावा अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था तो लाजमी कजो, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल जरूर करायो। जी तुम लाइ यह चीज आसान थी वे तो बस तुम वनो ही पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के परचेज करिए।

हिदायतुल्लाह मुझे नहीं पता, मैं देखती नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, भाई को वेलकम कहते हैं। जवान मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुलरी खां खालिक लाशारी शो तवाजो वी आई पी आई फरजाना परवीन मुझे हथ जो रुमाल प्ले कर जो मैं कोशिश क्या थी भा पर तवे गानों थी सो तो शाम वाले प्रोग्राम न सुबाने बुधी वासी। और ये मौजूदी बाजी सिदरा क्या हाल है आपके शो वरी नाई से मीरपुर खास खां उम्मीद अली लाशारी सलाम चौवन कुमार खाले जुड़े जो अदील अबड़ो ओके। और कहते हैं जी बाजी सिदरा आज तो बहुत हंस रही हो, क्या तनख्वाह मिली है क्या? ग्रेट वॉइस है मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम किशोर कुर्बान खास के लिए अजीज सोलंगी और असलम महर एंड एंड के बाद आज मैसेज गुमा पघार बाबा आखिरी महीने में कंखे मिलन दिया है असा के तो कौन मिलन दिया है। उनके अलावा ऐसे शो खालिद आलम खान हमारे साथ ही मोहम्मद आलम खान भा तुम मोहबतू एंड प्रोग्राम बुध पे। और ये हमारे साथ ही बाजी सिदरा आपका शो सुपर हिट है और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम खाले जुड़ी जो अदील अबड़ो चौवन कुमार अंकल गफूर आकिब लाशारी और आरजे गुलनाज प्लीज प्ले शमन शमन बुधी वठूं था। उनका अलावा कहते बाजी सिदरा लोग टाइम के बाद आपका शो लॉन्ग टाइम के बाद आपका शो सुन रहा हूं। एंट्री कबूल करना मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी भाई सलाम डिनोई अक्सा यास्मीन एंड मी सो थैंक यू प्यारे भाई। और गोट गाजी खान बुर्दी बलोच खां अली बुर्दी बलोच अरबेलो शकील अहमद जाकिर अली बुर्दी बलोच अरबाब अली मोहम्मद कबूल वकील अहमद कहते हैं असा खां पोए ताजो मैसेज जको ना भाव वो थोड़ो मिसिंग पार्ट थी वयो है सो मोहबतू एंड प्यारे भाजो प्रोग्राम बुध पया इन डीज़ स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी करजो अगर नथा कयो तो करे वेठो अगर कयो पया तो मुखे बुधाईंदा हलो। और ये मौजूद है कुंज अस्सलाम वालेकुम एफएम रेडियो की कुंज खुश रहो हमेशा कुंज जलाल सॉन्ग तो प्ले करो सुभाणी बुधंदासी हाँ मोकल जो टाइम थो है न तो फरमाशन के थोड़ो स्टॉप लगायो हिदायतुल्लाह मैंने तभी बोला थोड़ा सा अजीब लगा ओके सो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपको नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उनके ऊपर रابطہ जरूर कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे चाहे आप किसी भी गांव में रहते हैं किसी भी सिटी से ताल्लुक है आपका बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराते रहिए। और जी अब्दुल जी केसर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत वरी तव से मुझे मुलाकात जेका वो थे पई पंज बजे वाले प्रोग्राम में सो पंज बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करना ही पांजो ओ हेडो सरो ख्याल रखना कहते का गलती थी हो माजरत कहीं था जो फीडबैक रही जी आपको गानड़ो शानड़ो रही जी है तो माजरत कहीं था बाबा मोकलानी ना है सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This line check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: भारत के हैं गलत फहमियां जो शिकार न रहे पाकिस्तान जी शहर रगा है रहंदो कश्मीरियन जे सियासी सफारती हिमायत जारी रखी वेंदी पाकिस्तान सऊदी ए तुर्किया जो दिफाई मुआहिदो भी कें मुल्क खिलाफ न पर खिते जे अमुन लाया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफा वारे वजीर खालिद बिन सलमान जी मुलाकात पाकिस्तान ए सऊदी अरब विच में दिफाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफाक सऊदी अरब में शहरी इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मके दिफ़ाई मुआहिदे ते थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾिजाणीअ जो बि जाइज़ो वरितो वियो मके दिफ़ाई मुआहिदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरिजायो वियो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी 7 ॾींहनि वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आबन हर्मुज़ खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी 7 शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो आबन हर्मुज़ जो कंट्रोल हिन वक़्तु बि ईरानी बहिरिया वटि आहे पाज़ार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोवी चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबन हर्मुज़ खोलाए न सघी आहे अमेरिका जे हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं खिते में अमुन ऐं तरक़ी मुमकिन नाहे इलाक़ाई सहकार खे मुयसर बणाइण लाइ ॻाल्हियुनि खां अमली क़दम तरफ़ वधणो पवंदो न्यूयॉर्क में तक़रीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान खिते में गेट वे जो किरदारु अदा करण लाइ तयारु आहे आलमी अमुन लाइ बि पुरज़म आहे पाकिस्तान तकरारनि जे हल लाइ सालसीअ जो किरदारु अदा करे वक़ार बुलंद कयो पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो पाकिस्तान ऐं कतर खिते में अमुन लाइ अञा बे किरदारु अदा करे रहिया आहिनि दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: असली चीजां चारो मसालो जी सुञाणप ट्रेडमार्क नंबर 34,000 ॾिसी करे ख़रीद कंदा जीजान चारो मसालो ढोर जो हाज़मो दुरुस्त जीजान चारो मसालो ढोर सिहतमंद जीजान चारो मसालो जीजान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रिया और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109
4: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर
6: होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोज होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
7: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे
3: हैं. Share of the waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
4: भारत कहें गलतफहमियों जो शिकार न रहे पाकिस्तान जे हिस्से जो पानी रोकण या रुख मोड़ण वारे कहें भी कोशिश के जंगी कदम समझो वेंदो गडियल कौमन जे जनरल असेंबली के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त नदियूं कौमन जी उञ उझाईंदियूं आहिनि विरहाईंदियूं न आहिनि सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर खिते लाइ ज़िंदगी जी ज़मानत आहे भारत पारां सिंध आस मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि कानूनी जवाज़ नाहे कश्मीर पाकिस्तान जी शइ रग आहे ऐं रहंदो कश्मीरनि जे सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखी वेंदी पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर ख़िते जे अमुन लाइ आहे फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ सऊदी अरब में शहरी इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मके दिफ़ाई मुआदे तय थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾिजाणीअ जो बि जाइज़ो वरितो वियो मके दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरिजायो वियो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी 7 ॾींहनि वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आबन हर्मुज़ खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी 7 शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो आबन हर्मुज़ जो वटि आहे पाज़ार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोबी चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबन हर्मुज़ खोलाए न सघी आहे अमेरिका जे हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं खिते में अमुन ऐं तरक़ी मुमकिन नाहे इलाक़ाई सहकार खे मुयसर बणाइण लाइ ॻाल्हियुनि खां अमली क़दम तरफ़ वधणो पवंदो न्यूयॉर्क में तक़रीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान खिते में गेटवे जो किरदार अदा करण लाइ तयारु आहे आलमी अमुन लाइ बि पुरज़म आहे पाकिस्तान तकरारनि जे हल लाइ सालसीअ जो किरदार अदा करे वक़ार बुलंद कयो पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो पाकिस्तान ऐं कतर खिते में अमुन लाइ अञा बे किरदार अदा करे रहिया आहिनि दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न ॾिनी पई वञे औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुटो ज़रदारी शुरू कराई मीरपुर ख़ास में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम महमण चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरेतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदा त हुनखे बंदि कयो वेंदो बलोचिस्तान जे ज़िले दुके में रोड तामीर कंदड़ कंपनी जे कैंप ते दहशतगर्दनि जो हमिलो फायरिंग जी ॾे वठि दौरान हिकु सिक्योरिटी गार्ड शहीद थी वियो हिकु जहिड़ो सख़्त ज़ख़्मी थी पियो आहे दहशतगर्द 18 पोरेतनि खे अॻवा करे विया आहिनि सिक्योरिटी फोर्सिस तर्फ़ां मुबी पोरेतनि जी बाज़ियाबी लाइ सर्च ऑपरेशन जारी आहे पाक बैरिया जे अरबी समुंड में कार्रवाई वॾी मक़दार में मंशियात पकड़े वरिती ISPR मूजिब पाक नेवी जे जहाज़नि हुन नयर्मुख जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशियात पकड़ी वई समुंड में शकी ॿेड़े जी तलाशी दौरान गुजन खाननि में लिकायल मंशियात मिली नेवल चीफ पारां अमले जे आला पेशावरनि सलाहियतनि जी साराह कई पकड़ियल मंशियात जे आलमी मार्केट में मालियत अटिकल 75 करोड़ रुपया आहे
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हां साईं गाल भी एड़ी आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
0: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं रेडी थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी। पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रक्षा हम ऐं फेस मोह 9956 टोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर।

0: 0300 338 5569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301 380 83 47।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede or divert Pakistan's share of the waters will be treated as an act of war. India must make mistake about it.
4: भारत कंहिं ग़लति फ़हमी जो शिकार न रहे। पाकिस्तान जैसे जो पाणी रोकण या रुख मोहण वारी कंहिं बि कोशिश खे जंगी क़दम समझो वेंदो। कैडल क़ौम जी जनरल असेंबली खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, फिराईंदियूं न आहिनि। सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंध तास माहिदे खे हिकतरफ़ो मुअतल रखण वारे फैसले जो को बि कानूनी जवाज़ न आहे। कश्मीर पाकिस्तान जी शहरग आहे ऐं रहंदो। कश्मीरियुनि जी सियासी ऐं सिफारती मद जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्की जो दिफ़ाई माहिदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर ख़िते जे अमन लाइ आहे। अमरीका ऐं इसराइल ईरान खे कमज़ोर करण में नाकाम विया आहिनि। मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ायो पियो वञे। ईरानी क़ौम अमरीकी ऐं इसराइली साज़िश ख़िलाफ़ जमी बीठल आहे। अल जज़ीरा खे ॾिनल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल ख़िते जे कुझु मुल्कनि खे जंग में धिकियो आहे। अमरीका ख़िते जी दौलत ते कंट्रोल बरकरार रखण लाइ मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ाए रहियो आहे। यमन में थींदड़ शयुनि सां ईरान जो को बि तालुक न आहे। ईरान तकरार जे हल लाइ मदद ॾियण लाइ तयार आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे 70 ॾींहनि वारी जंग बंदी जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर अबना अर्मुस खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। सत शर्त पूरा थियण ताईं अमरीका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो। वॉशिंगटन ग़लती कई त विच ओवर में अमरीकी अॾा निशाने ते हूंदा। पासदारन इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी चयो आहे त अमरीका कुझु खिलाकनि लाइ बि अपना हरमुस खोलाए न सघियो आहे। अमरीका जी हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं ख़िते में अमन ऐं तरक़ी मुमकिन नाहे। इलाक़ाई सहकार खे मुयसर बणाइण लाइ ॻाल्हियुनि खां अमली क़दमनि तरफ़ वधणो पवंदो। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में गेट वे जो किरदारु अदा करण लाइ तयार आहे। आलमी अमन लाइ बि पुरज़म आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
5: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो ज़रियो आहिनि, उते सुठी खुराक ढोरनि जी ज़रूरत आहे।
6: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
7: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
8: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 310509, 03000 510509।
9: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, विजुअल की सहूलत, फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंड मेडिकल

0: ताईं कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जिसका आप इजहार नहीं कर सकते किसी से, वहाँ बनती है आपकी आवाज़। आरजे कमल खान और ये है आवाज़ का रिश्ता आप लोगों के साथ। एहसास, यादें, कुछ एहसास और खूबसूरत सी आवाज़ और एक खास रिश्ता। तो जी बिल्कुल, आवाज़ के रिश्ते में मैं आपके साथ आ चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मुझे सुन रहे होंगे और शाम के सभी तक आप मेरे साथ ही रहेंगे।

ओके जी जनाब, तो हम लोग बात कर रहे थे इस सॉन्ग की। तो जी बिल्कुल, आगे चलते सॉन्ग को थोड़ा प्ले करूंगी और जो आज का टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे। आज का टॉपिक ऐसा है, हाँ तो जी आप लोग प्रोग्राम में शामिल कैसे होंगे? आप लोगों ने या तो आप मुझे हमारे FB पेज पर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम लाइव चल रहा है आवाज का रिश्ता GFM88 के पेज पर, वहाँ आप कमेंट करके शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें 8881 पर मैसेज कर सकते हैं। और सिंपल है भाई, सखर वाले तो लाजमी आए, सखर वालों की तो शहर से बात करें, सखर से ही तो है लाइव। तो जी बिल्कुल, सखर आपने लिखना है SKR अपना मैसेज, और उसके बाद आपने सेंड कर देना है 8881 पर, क्योंकि 8881 के जो मैसेजेस होते हैं वो पहले ही पैनल वाले शामिल कर देते हैं प्रोग्राम में। मेरी नज़र सबसे ज्यादा वहीं पर होती है, इसलिए कह दूँ कि भाई वहीं पर मैसेज किया गया।

या कोई पोएट्री उन्हें डेडिकेट करवानी तो वो आप लिख कर मुझे सेंड कर सकते हैं उनके नाम के साथ, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो जी बिल्कुल, पहले तो हम एक अच्छे से ट्रैक की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर भी, कि आज का टॉपिक ही हमारा कुछ ऐसा है, और देखें टाइम का पता नहीं चलता कहाँ 5 बजे थे और कहाँ अब 5:20 PM हो चुके हैं, मतलब 5:20 हो चुके।

जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा ना कि मौसम बदलते मौसम के साथ इंसान बदलता है, कहीं कहीं कभी कभी उसकी सोचें बदल जाती हैं, तो खुद को भी बदलें, तो कभी कभी खुद को भी खिजा का मौसम बना लिया करें, कभी कभी खुद को भी खिजा का मौसम बना लिया करें।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by...
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 03003385569। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 ऑटोस मेहराबपुर। नालो आहे एतमाद जो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, एंड बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबपुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752642 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत जवाबित लागू हैं.
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो जी एफ एम 94.

मतलब मैंने सही पढ़ा था, माताज फुल मजे में आओ। चलिए आप लोग ऐसे बताते रहा करें मुझे सॉन्ग और मैं प्ले, यही तो है, लाइफ एंजॉय करें मजे से।

ट्रैक सुन रहे आप लोग. ब्रेक था, ब्रेक के बाद मैंने एक सॉन्ग प्ले किया था, माँ तो मजे में. अभी बिल्कुल मैंने सही पढ़ा था, सिंधी थी तो मुझे भी आती है, पढ़ लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ. समटाइम थोड़े वर्ड मुश्किल होते हैं जो नहीं कर पाती. अच्छा जी जनाब, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:59 PM, यानी बस अब एक मिनट रहता है 6 बजने में. मतलब एक मिनट भी क्या, मतलब लम्हे रहते हैं 6 PM हो जाएगा 6 बजे. 6 बजे मैं लूंगी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और साथ में न्यूज, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ आवाज के रिश्ता प्रोग्राम को, ठीक है ना भाई. अच्छा जी, तो बहुत सी बातें होती रहेंगी, एक घंटा ऐसे गुजरा पता भी नहीं चला आप लोगों से. बस हमारे पास 7 बजे का टाइम रहता है और जो मुझे सॉन्ग्स कह रहे हैं मेरे लिसनर्स, तो उनसे मैं यही कहूंगी या तो सिंगर का नाम मुझे लिखकर सेंड करके बताएं आप कौन सा सॉन्ग कह रहे हैं. इस तरीके से समझ नहीं आ रहा ना कि आप कौन से सिंगर का सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं.

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: लॉन्ग मार्च का पोए गालियों करण आहन त पहिरी छो नथियों कई वजन केपी जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत के गालियों जी आछ करे छडी। पेशावर में सीनियर सहाफिन सा गालंदे सोहेल आफरीदी चो त लॉन्ग मार्च में अजा 7 दिन आहन पोए भी गालियों ही थेणियों आहन त हाने छो नथियों कई वजन गालियों लाए पहिरी भी तैयार हुआसी हाने भी तैयार आयूं। वफाकी हुकूमत असांजी एस्टेब्लिशमेंट सां गाल थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी गाल हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मौसम न कई आहे। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर वारो मार्च खोटो जबल निकतो कुओ साबित थियो आहे। सोहेल आफरीदी पहिरीं इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो, हाणे सियासी सतह ते बि फैल थियो आहे। सुत समा वारे वफाकी वज़ीर अता तार चयो आहे त सोहेल आफरीदी जी पंहिंजी पार्टीअ तां रिट ख़तम थी वई आहे। पीटीआई जो दहशतगर्दनि सां बि गठ जोड़ आहे जंहिं सबबि हमलनि जी मज़म्मत बि नाहे कंदी। अख़्तियार वली ख़ान चयो त पीटीआई खे लॉन्ग मार्च खां भॼणो ई हो त ऐलान छो कयो वियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब में शहरी ऐं इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मका दिफ़ाई मुआदे तहत थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾिजाणीअ जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मका दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरचायो वियो।
4: Must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
3: भारत कंहिं बि ग़लतफ़हमीअ जो शिकार न रहे। पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारी कंहिं बि कोशिश खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो। गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विरहाईंदियूं न आहिनि। सिंधु दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर खिते लाइ ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि क़ानूनी जवाज़ नाहे। कश्मीर पाकिस्तान जी शरग आहे ऐं रहंदो। कश्मीरनि जी सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर खिते जे अमुन लाइ आहे। अमरीका ऐं इसराइल ईरान खे कमज़ोर करण में नाकाम विया आहिनि। मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ायो पियो वञे। ईरानी क़ौम अमरीकी ऐं इसराइली साज़िश ख़िलाफ़ ॼमी बीठल आहे। अल जज़ीरा खे ॾिनल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त अमरीका ऐं इसराइल खिते जे कुझु मुल्कनि खे जंग में धिकियो आहे। अमरीका खिते जी दौलत ते कंट्रोल बरक़रार रखण लाइ मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ाए रहियो आहे। यमन में थींदड़ शयुनि सां ईरान जो को बि तालुक़ु नाहे। ईरान तकरार जे हल लाइ मदद ॾियण लाइ तयारु आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे 7 ॾींहनि वारी जंगबंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे दावा रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघिजे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आबना हुर्मस खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई, हाणे महिमान नवाज़ीअ जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजे सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई। अफ़गाननि खे पंहिंजे सरज़मीन ॾेई ग़लती कई, पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे। केस में नामज़द एम पीअ जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस खे स्पीकर खां इजाज़त वठणी पवंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी के पी असेंबली जे लिखियल ख़त ते तनक़ीद। मोहसिन नक़वी के पी असेंबली जो लेटर जारी कंदे चयो त जेकॾहिं को एम पीअ कंहिं माण्हूअ खे क़तल करे छॾे त छा पुलिस खेसि गिरफ़्तार करण खां अॻु बि स्पीकर जी इजाज़त जो इंतज़ारु कंदी।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
5: मालवन भारन लाए खुशखबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अम्हां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
6: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03200।

0: में आहिनि। जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो ख़ूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे। प्रोग्राम सेज जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। अञा असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-8196-51 0301-8196-51। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरक जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कजो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पुशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। सभु खां पहिरियों त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? त वैसे ठीकु आहे
1: जी, साईं अल्लाह ताला जा करोड़ आहे।
0: डॉक्टर साहब वरी कहिड़ो मौज़ूबात ॼाण ॾींदा सर?
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन रब पाक जूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि अव्हांखे ख़बर आहे त रोज़ाना इन टाइम ते नशर थींदो आहे ऐं हज़ारे सामाइन ताईं असांजो आवाज़ु पहुचे

प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मोहन साहबु। डॉक्टर साहबु, तव्हां हिकु बहितरीन माशाल्लाह ॼाण ॾिनी ऐं पेशंट हुयो जेको तव्हांखे बसि जेको ॿुधायो वियो सर, जेको ज़ाहिरु हुनखे फ़ाइदो पियो आहे, उहो पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड करायो वियो आहे त ॿिया बि उनखां फ़ाइदो वठनि जीअं त जी सर। सर बिल्कुलु इहा ई हिकु हमदर्दी हूंदी आहे सर जी। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। डॉक्टर साहब, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। नोट, अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

डॉक्टर साहब, कॉलन जो सिलसिलो सुर जारी थी चुको है, लेकिन इन खां पहिरियां हिकु नंढड़ी ब्रेक वठंदासीं। हलंदासीं शॉर्ट ब्रेक जी तरफ़, त ॿुधंदा रहो GFM 94।

0: शामिल थी सको था। असां जे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851, 0301-219-6851। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जी खंघि, टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधण ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। प्रोग्राम में हिकु पहिरीं कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं, नादर अली सियाल होटल मेरापुर खां बाबा
0: जी अदा, छा पुछण था हिन डॉक्टर साहब खां?
1: हथ जेको सड़ी पियो माशाल्लाह असांजो बहितर आहे डॉक्टर साहब, असांखे दवा ॾिसी तेल वग़ैरह।
0: जी जी,
1: हाणे हिकिड़ी कन जो जेको आहे सॼे मुंहिंजे कन जो ढकड़ी छा पियो टाइम बंदि थी थी वञे।
0: जी जी,
1: इहो डॉक्टर खां पुछंदा साईं।
0: हा ठीकु आहे डॉक्टर साहब, तव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। सर, पहिरियां पेशंट पहिरियों शायदि ॾेखारे वियो आहे, दवा वरिती आहे, उनखे फीडबैक ॾिनो हुन सर, त माना फ़ाइदो पियो आहे।
2: होटल त सियाल होटल त लाइव कॉल जो प्रोग्राम जे दौरान लाइव कॉल कई त हुनजो हथु जेको आहे सो सड़ी पियो आहे, त हींअर छा कजे फस्ट एड तौर ते? त मां हुनखे ॿुधायो त पचाइण वारो जेको तेल हूंदो आहे उहो तव्हां जेको आहे सो हथ खे लॻायो, तव्हांजो हथु जेको आहे सो इनशाला सही थींदो आहे। हुन दोस्त उहो अमल उन वक़्तु कयो ऐं अलहमदिल्ला हुन इहो फीडबैक ॿुधंदड़नि ताईं पहुचायो, त अलाह जी महिरबानी सां जेको असां कुदरती ऐं हिकिड़ो ॾस ॾींदा आहियूं त उन जे दौरान हुन उहो ई कयो, उनखे कंहिं डॉक्टर ॾे उन वक़्तु वञण जी ज़रूरत न पई, का बाज़ारू शइ वठी अची हणण जी ज़रूरत न पई ऐं अलाह जी महिरबानी सां हुनखे शिफ़ा मिली वई। या हुनजी महिरबानी दोस्त जी, हुन कॉल करे जेको आहे सो ॿुधायो। ऐं ॿियो दोस्त हींअर मशवरो कयो वरितो आहे त कन जे जेको आहे सो यानी ॿुधण जो मसइलो हुन सां आहे, त मां दोस्त खे मशवरो ॾींदुसि। हिकु त जैतून जो तेल जेको आहे सो बिल्कुलु कन जे पापड़ी जी या जेके कन जे पोयां उनखे लॻाए सघनि था, ऐं बादाम, मिसरी ऐं सौंफ़ अदद पाउ वठी करे सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइनि, इनशाला उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु अची वेंदो आहे। वरना उनजी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में आहे, दोस्त खे चवंदासीं त इहे अमल करे ॾिसनि, जेकॾहिं फ़र्क़ु पइजी वञे त ठीकु आहे, वरना पोइ रूबरू ॾेखारे सघनि था। वरी महिरबानी हिकु दफ़ो ॿीहर उन दोस्त जी, जंहिं असांजे ॿुधंदड़नि ताईं ऐं असांखे बि इनकरेज करण जे लाइ हुन जेको आहे सो पंहिंजो फीडबैक ॾिनो, वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सेज ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु, ऐं अवां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851, 0301-219-6851। डॉक्टर साहब, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटडी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, डॉक्टर साहब जी क्लिनिक अंगारे जॾहिं बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो, छंछर, आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

0: ਬੀ ਕਾਲਜ ਤਰਫ ਹਲਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ
0: ਜੀ। ਅਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂ
1: ਸਰ? ਫਕੀਰਾਬਾਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ
0: ਜੀ। ਅਦਾ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂ
1: ਸਰ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ ਦਵਾ ਪਿਆ ਰੰ ਤਾਂ ਜਗਾ ਆ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਮਨੇ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਤੋਂ ਪਏ। ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਸਰ।
0: ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਜੋ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ
1: ਸਰ? ਸਬੂਰ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਦੋਸ ਮਨੇ ਸਜੋ ਦੀ ਫਰਕ ਹੋਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਖਾਰ ਨਿਕਲਦਾ।
0: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੇ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਰੇਡੀਓ ਬੋਲ ਜੀ ਸਰ।
2: ਸੈਂਕ ਤਾਂ ਨੰਢੜੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਨੰਢੜੇ ਮਾਰਨ ਜੇ ਲਾਇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ अड़ी किस्म जो का भी कंडीशन थे तो रूबरू डॉक्टर वो ऐसो वही उन्होंने दिखारे। बी गाल दवा वरती है तो मलेरिया भी निकती है उनको कोर्स हल पो तो मेडिकली ट्रीटमेंट में टे ऐसा ट्रीटमेंट उनकी कराई वी है। जेस तीन टे ढी ट्रीटमेंट हल्दी है तेस तीन ये बुखार अपडाउन थो रह है। इन में परेशानी की गाल कान्ने का जैसे ज्यादा तकलीफ खराब थे थी तो उन ही डॉक्टर रूबरू उनके दिखारे सको था, वरना बे डी असा बिल्कुल दिखारे सको था। बाकी फिलहाल जैसे बुखार तेज थे तो उन बो कुछ न रुगो मथे से तुम पट्टी रख तो बुखार उनको घटी वो यो ही उनको हल है। ज्यादा तबियत खराब थे उन ही डॉक्टर वही बजाय ऐसो तो ये है जो मरीज जी हालत वरन तो बिगड़ी वी है। यानी तुम एक डॉक्टर का दवा वी आयो उने हिसाब से दवा दिनी है ऐं पंहिंजे हिसाब सां डोज़ ते रखियो आहे। तव्हां जॾहिं वरी ॿिए डॉक्टर ॾे वेंदो त हुनखे उहा ख़बर न हूंदी त ॿिए डॉक्टर कहिड़ो डोज़ रखियो आहे, उहो वरी पंहिंजे हिसाब सां ॿियो डोज़ ॾींदो। ईअं अवां जेको आहे सो पंहिंजा पैसा बि ख़र्चु कंदा वेंदो ऐं वरंदो तबियत बि मरीज़ जी ख़राबु करे न वेंदो। बहितर इहो हूंदो आहे जंहिं डॉक्टर खे तव्हां ॾेखारियो आहे उते ई दुबारा उन ई डॉक्टर ॾे वञी उन ई कंडीशन जो हवालो ॾींदो त उहो अव्हांजे लाइ बहितर रहंदो। या जीअं अव्हांखे डॉक्टर मशवरो ॾिनो आहे त हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं तव्हां ट्रीटमेंट ते रखो पेशेंट खे त तव्हां उन ते ई रखो त वधीक बहितर हूंदो आहे। बाक़ी असां तव्हांखे मशवरो इहो ॾेई सघूं था तेज़ बुखार में तव्हां मथे ते पटियूं पाणी जी रखी सघो था। इन में खाराइणु पीआरणु जेको आहे सो यानी मानी वग़ैरह पेशेंट खे न खाराइजे त बहितर आहे। नरम दलियो वग़ैरह या ब्रेड वग़ैरह या खीर सां या मुङनि जी दाल या सायूं तूरियूं कारे मिर्च में इहो जेकॾहिं वॾो आहे नंढड़ो आहे त उनखे सिर्फ़ु खीर सां ई त इहा ट्रीटमेंट या दलियो वग़ैरह इस्तेमालु कंदो त उन सां जेको आहे पेशेंट जल्दी रिकवर थी वेंदो आहे। जी
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर साहबु, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जंहिंमें गुर्दे पिते ऐं मसानी जे पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुनरक जो सूरु, नक कन गलो नज़लो निछूं, मथे जो सूरु, अध मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघि टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851।
2: जेके ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि ते खे सदाई इहा शिकायत रहंदी आहे त अवां आवाज़ु जेको नंबर जेको हूंदो आहे अवां तेज़ी सां पुकारे वेंदा आहियो। इन जे करे हिकु दफ़ो असां पाण जेको आहे सो अवां ताईं नंबर पहुचाईंदासीं 0301-9196-851 यानी 0301-9196-851 हीअ कॉल नंबर आहे। अवां कहिड़े बि टाइम ते जेको आहे सो कॉल करे सघो था ऐं बिल्कुलु ॻाल्हाए सघो था। डेज़ ॾींहंनि जो शेड्यूल अवां ताईं एसन भाई पहुचायो आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर आउं बि अवां ताईं पहुचायां थो त हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जुमे जो ॾींहुं, छंछरु जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं, सूमर जो ॾींहुं, अरबा जो ॾींहुं, ख़मीस जो ॾींहुं क्लिनिक खुलियल रहंदी आहे। बाक़ी अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। टाइमिंग अव्हांखे ख़बर आहे सुबुह जो 11 खां शाम जो 5 बजे ताईं, ऐं इन विच में जेको आहे सो अंगारो क्लिनिक बंदि हूंदी आहे।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश हूंदी आहे त जेके बि कॉल कनि त महिरबानी करे जेको आहे सो त जेको आहे सो को ज़रूरी ॻाल्हि पुछणी आहे ट्रीटमेंट जे दौरान या इलाज जे हवाले सां त उहो ज़रूरी कॉल करे सघनि था ऐं ग़ैर ज़रूरी कॉलनि खां थोरो परहेज़ कनि।
0: प्रोग्राम में एक बी कॉल जी तरफ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदा केरे किथे खां? अल्हम्दुलिल्लाह। अदा तव्हां ॿुधायो, ठीकु आहियो? केरे किथां खां पिया ॻाल्हायो?
1: साईं मां कोटड़ी कंबीर खां शायदि हुसैन सोलंगी बाबा आरज़ू।
0: जी जी, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
1: सर इहो अर्ज़ु इहो आहे त ख़ारिश थी पई आहे, ख़ारिश में माना थोरा दाणा दाणा थियनि था, फुरड़ी जी हल्की हल्की थींदी आहे।
0: जी जी,
1: उन जी वजह सां मां ॻाल्हि कई आहे तव्हांखे।
0: अच्छा, पोइ कोटड़ी कबीर बिल्कुलु वेझो आहे, डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे त वधीक बहितर आहे।
1: कहिड़ी जॻह ते सर?
0: तव्हांखे सर एड्रेस ॿुधायोसीं, साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप जे साम्हूं ई डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक मौजूदु आहे।
1: जी जी,
0: वधीक डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर।
2: जी बिल्कुलु, दोस्त खे ॿुधाईंदासीं। ॾिसो, हिकिड़ी ख़ारिश जेकी आहे जिस्म में छो थींदी आहे ख़बर आहे, खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि, खाधे जो बदल थींदो आहे उनजे करे थींदी आहे, अंदरि जिस्म में रत जो बिगाड़ थी वेंदो आहे जंहिंजे करे जेको आहे सो ख़ारिश जा मसाइल थींदा आहिनि। इनजे करे असां उन्हनि खे जेकी दवाऊं ॾींदा आहियूं उहे हिकिड़ी कुदरती तौर ते जेकी पीअण जी हूंदी आहे उन में ब्लड प्रिफेयर हूंदी आहे, यानी रत तव्हांजो साफ़ु कंदी आहे, ऐं जेके साबुण ॾींदा आहियूं उहो बि ब्लड प्रिफेयर हूंदो आहे, उहो ब्लड खे जेको आहे वॉश कंदो आहे, उहो जिस्म खे जेके बि एंटी बैक्टेरियाज़ जेके जरासीम हूंदा आहिनि जेके जिस्म में अची वेंदा आहिनि चमड़ी ते, उन्हनि खे जेको आहे हू वॉश कंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो, असां निम जेको आहे सो निम जा पन तव्हांखे ॿुधाईंदा त पाणी में काढ़े उन सां विझारियो मरीज़ खे, या निम जा गोरा खारायो, या जेको आहे सो जेकॾहिं इहो बि नथा कयो त पनीर बूटी, यानी पनीर अव्हांखे शहर मां मिली वेंदो आहे अंसारी वटां, उनजा 7 दाणा और रोज़ाना राति जो पाणी में पिसाए रखो, थोरो कड़वो हूंदो आहे पीअण में, लेकिन ज़हर ई ज़हर खे मारींदो आहे, उहा कड़वाहट अंदरि वञी करे रत खे साफ़ु कंदी आहे ऐं उहो रत जेको आहे सो बिल्कुलु साफ़ु थी वेंदो आहे। लेकिन इहो बि ॾिसो, असां वटि मरीज़ चवंदा आहिनि त बसि हिकिड़े ॾींहं में ठीकु थियूं, त ईअं न थींदो आहे, चाहे असांजी दवा हुजे चाहे इहे जेके अव्हांखे ॿुधायूं था ॾिस, इन्हनि खे बि कुझु ॾींहं इस्तेमालु करिणो पवंदो आहे त अंदरि वञी अव्हांजे जिस्म में जेके फासिद मादा गॾु थिया आहिनि हुननि खे हू इहे दवा हुनखे साड़ींदी आहे, हुनखे जलाईंदी आहे, हुनखे ख़तमु कंदी आहे, अव्हांजे जिस्म मां जेके ख़राबु मादा ज़हरीला मादा हूंदा आहिनि तॾहिं उहे अख़राज थींदा आहिनि ऐं अव्हांजो जिस्म पोइ बिल्कुलु साफ़ु थींदो आहे। न सिर्फ़ु अव्हांजी ख़ारिश ख़तमु थींदी आहे, पर इन्हनि ॾसनि पननि सां, इन्हनि दवाउनि सां अव्हांजे जिस्म ते जेके ॿिया बि असरात हूंदा आहिनि, दाग अची वेंदा आहिनि, या जेको आहे सो जिस्म में बि हिकिड़ी गरमाइश हूंदी आहे, उहा बि अव्हांजी ख़तमु थी वेंदी आहे। लेकिन हिते जेको आहे सो तुर्त इलाजु खपे, माण्हू वञी ऐं सुयूं हणाईंदा आहिनि ऐं पोइ उनजो आदि थी विया आहिनि, साला साल हुननि जी बीमारी न छॾींदी आहे, रड़ रड़ा हूंदी आहे, रड़ रड़ा खनखना हूंदी आहे, ऐं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इन जे करे जो हू सुयुनि जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि, उन्हनि ज़हर जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि, उन्हनि दवाउनि जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि, जेके उन्हनि खे यानी बर वक़्तु सिर्फ़ु जेको आहे सो फ़िलहालु फ़ाइदो ॾींदी आहे, लेकिन उनखे मर्ज़ु न छॾाईंदी आहे। सो इन जे करे महिरबानी करे जॾहिं बि कंहिंखे अहिड़े क़िस्म जी थिए थी त हिकु त पंहिंजे खाइण पीअण जो बिल्कुलु ख़्यालु रखो, अहिड़े तरीक़े सां जेकी जिन जेकी शयूं तव्हां सम्झो था तव्हांखे जिन मां ख़ारिश थिए थी, अंडो, मच्छी, वाङण, वॾो गोश्त, खटी शइ, देग जो चांवर, उहे तव्हां हरगिज़ इस्तेमालु न करियो, ऐं जेके शयूं ज़्यादा इस्तेमालु अव्हांखे करणियूं आहिनि थधियूं शयूं इस्तेमालु कयो, पाणी ज़्यादा जेको आहे सो इस्तेमालु करे सघो था, ऐं जीअं मां ॻाल्हि कई त पनीर इस्तेमालु करे सघो था, निम सां तव्हां वेझो, अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी वेंदो, वरना रूबरू ॾेखारे ऐं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराए, वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। प्रोग्राम में हिकु ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जेदा केरे किथां खां? तमामु पुराणो सर असांजो लिसनर बि आहे,
2: पहचान थी वई
1: सर, मूंखे दवा ॾिनी, हाणे माशाल्लाह निंड जी सफ़ा सही लॻी पई आहे।
0: अच्छा, माशाल्लाह।
1: अॼु सर खे थोरो ॿुधायां, जेका
0: जी जी
1: निंड सही आहे,
0: सही। अलहमदुलिल्लाह ठीक है ठीक है सर,
1: वरी
0: मेहरबानी
1: सर,
0: वरी मेहरबानी,
2: ठीक है दा, वरी मेहरबानी दोस्त जी, मेहरबानी
0: स्पेशली सर फीडबैक देण जे लाइ उन कॉल कई आहे,
2: स्पेशली फीडबैक जेके दोस्त ॾींदा आहिनि जिन खे फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। अलहमदिल्ला अॼु टियों पेशंट आहे जिन जेको आहे सो यानी हिकिड़ी फ़ाइदे जी हिकिड़ी निशानदेही कराई आहे, त अलहमदिल्ला हुनखे फ़ाइदो। ॾिसो हीअ हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो पेशंट केरु मोकिले थो ऐं हुनखे फ़र्क़ु पए थो, वरी उनजी ॿियनि खे ॿुधाइणु त हुन मां असांखे फ़र्क़ु पियो आहे, हीअ हिकिड़ी तमामु बहितरीन जेको आहे सो ॻाल्हि आहे। ऐं वॾी महिरबानी भाउ ख़ादिम हुसैन सोलंकी जी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब, जेके अव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था 0301-9196-851 ऐं इहो ई साॻियो ई नंबर आहे डॉक्टर साहिब जो कॉन्टेक्ट नंबर, डॉक्टर साहिब सां कंहिं वक़्तु कॉल करे कंहिं बीमारी बाबति तव्हां ॼाण हासिलु करे सघो था। डॉक्टर साहिब, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचरण सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
3: सर मुंहिंजे इहो पंहिंजो जंघनि जे पाड़नि में सूर आहे ऐं बाहनि जे पाड़नि में ॾाढो सूर आहे, तमामु अरसो इलाही थी वियो आहे।
0: अच्छा, इनखे केतिरो टाइम थी वियो आहे? तक़रीबन
3: तक़रीबन साल थी वेंदो, पर दवाऊं ॾाढियूं वठियूं आहिनि।
0: अच्छा, पोइ एतिरो टाइम थी वियो आहे डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो आहे, त हिन महिल ताईं तव्हां अलहमदिल्ला बिल्कुलु सही हुजो आहे।
3: बसि कोन अचणु थियो आहे।
0: हा ठीकु आहे, डॉक्टर साहिब अव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर, हुन सर तक़रीबन साल लोड़ियो आहे पंहिंजे सूर दर्द में, ॿिए हंधि बि ॾेखारियो आहे, लेकिन ज़ाहिर
2: आहे बिल्कुलु
0: फाइनली जीअं चवंदव सर आख़िर में
2: टाइम थींदो आहे, को वेझिड़ाई खां थींदो आहे त उनजो को ॾसपंदो ॾेई सघिबो आहे। हिकिड़ो पुराणो मर्ज़ु आहे त उन में हींअर ट्रीटमेंट यानी इलाजु ई ज़रूरी आहे। सो मां भाउ खे इहो मशवरो ॾींदुसि त रूबरू ॾेखारे वञनि ऐं ट्रीटमेंट उनजो इलाजु कराइनि, त उहो वधीक बहितरु आहे। जी सर,
0: प्रोग्राम में आख़िरी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी प्यारा भाउ, कह रहे हैं किथां खां? माशाल्लाह तमामु सर असांजो लिसनर आहे, ॿुधंदड़ असांजी GFM 94 जो। जी असां छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहिब खां ऐं असांजे प्रोग्राम जे बारे में ज़रूरु फीडबैक ॾींदा?
4: पहिरियां त आउं अव्हांखे मुबारकबाद ॾींदुसि तव्हांखे ऐं डॉक्टर साहिब खे, तव्हां माशाल्लाह बहितरीन प्रोग्राम कयो पिया ऐं डॉक्टर साहिब बहितरीन मशवरा ॾिए पियो। ऐं डॉक्टर साहिब खे मां हिकिड़ो फीडबैक ॾींदुमि त मां कुझु ॾींहं पहिरियां पंहिंजे माना सुबुह सवेर जे उथण जे बारे में मां हिकिड़ो इतलाह ॾिनो त उथंदो आहियां त मूंखे थोरी कमज़ोरी ऐं फेरी ईंदी आहे, ऐं उन खां बाद जॾहिं मां ॿ टे चकर ॾींदा मां सही थींदो आहियां। डॉक्टर साहिब जेके मूंखे टिप्स ॿुधाया ऐं मूं उन्हनि ते अमल कयो, उहे मां जेको टिप्स हिकिड़ो बादाम मिसरी ऐं साईं वॾा वॾा थिया उहे मां घोटे पची हाणे बिल्कुलु ऐं मूंखे इलाही फ़ाइदो आहे ऐं मां तंदुरुस्तु आहियां।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह तमामु बहितरीन। ऐं ऐं अव्हां जेको फीडबैक ॾिनो आहे इहे अव्हां सॼणनि जो दोस्तनि जो महिरबानी आहिनि जेके असांखे प्यार मोहबत
4: ॾियनि था। ऐं इहो इहो ई जेको आहे साईंजो ॾस मां ॿिनि खे बि ॾसियो आहे जेके सुबुह सवेर सां पंहिंजो पाण खे थोरो
0: बिल्कुलु माशाल्लाह सर ज़बरदस्त। जी थैंक यू सो मच। इहा अव्हां सॼणनि जी महिरबानी आहे, अव्हां सॼणनि जो प्यारु आहे जेको असांखे माना ॿुधायो था, हिकु रिज़ल्ट ॾियो था, व्यू ॾियो था।
4: जेको डॉक्टर साहिबु ऐं आहिनि माशाल्लाह नौजवान प्यारा आहियो, डॉक्टर साहिबु प्यारो आहे ऐं माशाल्लाह अलाह साईं डॉक्टर शाह जे हथ में शिफ़ा था फरमाई ऐं डॉक्टर साहिब जे हथ में शिफ़ा आहे।
0: जी सर माशाल्लाह त तमामु घणी महिरबानी भाउ जी, हुन फीडबैक बि ॾिनो ऐं कंहिंजी साल सियाल खां पियो ॻाल्हाए सर।
2: ज़बरदस्त दोस्त जी जेको आहे सो वॾी वॾी महिरबानी इनकरेज करण जी। इन ॻाल्हि ते वरी हिकु दफ़ो ॿीहर असां रब ताला जो शुक्र अदा कयूं था। इन में असांजी मुंहिंजी का बि कमालियत कान्हे का, इन में अल्लाह ताला जा जेको आहे सो अहसान आहिनि। अल्लाह ताला हिकिड़ी शिफ़ा रखी आहे, जीअं दोस्त ॻाल्हि कई असांजे शिफ़ में हथ में शिफ़ा आहे, त इहा अल्लाह ताला जा अहसान आहिनि। ऐं इहे जेको आहे सो इन्हनि जेके क़ुदिरती शयूं आहिनि उन्हनि में ॾिसो, असां बार बार बार बार इहे सिर्फ़ु चवंदा आहियूं त भई हीअ क़ुदिरती शयूं आज़मायो, छो जो असांजूं दवाऊं बि इन्हनि ई शयुनि मां ठहियल आहिनि। ॾिसो हिननि जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, ऐं हीअ क़ुदिरती शयूं आहिनि, हिननि जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को। ऐं हिकिड़ी बहितरीन जेको आहे ग़िज़ा बि आहे, दवा बि आहे। बादाम, सौंफ़, मिसरी ऐं अछा मिर्च हर क़िस्म जे रगुनि जी कमज़ोरी खां, दिमाग़ जी कमज़ोरी खां तव्हां सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाई सघो था। दोस्त खे इहो चई सघूं था, लेकिन कंहिं कंहिं दोस्त खे को मसइलो हूंदो आहे त उनजे बारे में जेकॾहिं बहितरु इहो रहंदो त उहो दोस्त लाइव कॉल करे ऐं पुछी करे पोइ इस्तेमालु करे त अञा वधीक बहितरु आहे। अव्हां सभिनी जे साथ जो, प्यार जो, मुहबत जो, ख़ुलूस जो थोराइतो आहियां। वॾी महिरबानी अवां।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु हुआ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। वक़्तु गुज़रंदे देरि न लॻंदी, ऐं असांजो अॼोको प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। दुआ आहे त अल्लाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं ख़ुशि रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह वाही।

0: दस बार कर खो चुके हैं, मगर सियासी तौर पे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि सोहेल खान अफरीदी की रेत अपनी पार्टी को खत्म हो चुकी है। इतनी सियासी कमजोरी कभी भी नहीं देखने में आई थी इन 13.5 साल में जितनी आप देखने में आई है।
1: पीटीआई जो 27 सितंबर वारो मार्च खोटो जबल निकतो कुओ साबित जो 27 सितंबर वारो मार्च खोटो जबल निकतो कुओ साबित थियो आहे। सोहेल अफरीदी पहिरीं बि इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो, हाणे सियासी सतह ते बि फेल थियो आहे। सुद समा वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सोहेल अफरीदी जी पंहिंजी पार्टीअ तां रिट ख़तम थी वई। पीटीआई जो दहशतगर्दनि सां बि गठजोड़ आहे, जंहिं सबबि हमलनि जी मज़बत बि नाहे कंदी। अख्तियार वली खान चयो त पीटीआई खे लॉन्ग मार्च खां भॼणो ई हो त ऐलान छो कयो वियो हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब में शहरी ऐं इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मका दिफ़ाई मुआदे तहत थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾिजाणी जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मका दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरचायो वियो।
2: Must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of the waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: भारत कंहिं ग़लति फ़हमीअ जो शिकार न रहे। पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारी कंहिं बि कोशिश खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो। गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विराईंदियूं न आहिनि। सिंधु दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि क़ानूनी जवाज़ न आहे। कश्मीर पाकिस्तान जी शहरग आहे ऐं रहंदो। कश्मीरनि जी सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्कीअ जो दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर खिते जे अमुल लाइ आहे। अमरीका ऐं इसराइल ईरान खे कमज़ोर करण में नाकाम विया आहिनि। मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ायो पियो वञे। ईरानी क़ौम अमरीकी ऐं इसराइली साज़िश ख़िलाफ़ ॼमी बीठल आहे। अल जज़ीरा खे ॾिनल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल खिते जे कुझु मुल्कनि खे जंग में धिकियो। अमरीका खिते जी दौलत ते कंट्रोल बरक़रार रखण लाइ मुस्लिम मुल्कनि खे विढ़ाए रहियो आहे। यमन में थींदड़ शयुनि सां ईरान जो को बि तालुक न आहे। ईरान तकरार जे हल लाइ मदद ॾियण लाइ तयारु आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी 7 ॾींहनि वारी जंगबंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आदना हुर्मस खे ट्रंप स्ट्रेट जो नालो बि ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। पाकिस्तान अफ़गाननि जी वारनि ताईं महिमान नवाज़ी कई। हाणे महिमान नवाज़ीअ जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई। अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे। पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश न आहे। केस में नामज़द एमपीए जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस खे स्पीकर खां इजाज़त वठणी पवंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबली जे लिखियल ख़त ते तनक़ीद। मोहसिन नक़वी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबलीअ जो लेटर जारी कंदे चयो आहे त जेकॾहिं को एमपीए कंहिं माण्हू खे क़तल करे छॾे त छा पुलिस खेसि गिरफ़्तार करण खां अॻु बि स्पीकर जी इजाज़त जो इंतज़ार कंदी। कानून जे नज़र में सभिनी जी बराबर हुजण जो हीअ कहिड़ो मिसाल आहे। वाह, अवां जारी रखो। छा हिनखे ई रियासत मदीना चयो वेंदो आहे? सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न पई ॾिनी वञे। औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी शुरू कराई। मीरपुर ख़ास में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विराइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील महमूद चयो त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरेतुनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे। सूबे में 50,000 औरतूं ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो। जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदो त स्कूटी ज़ब्त कई वेंदी। वजीर आजम मुलाकात में पेट्रोलियम लेवी वो मसलो हल न कयो तो बीहर लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज नईम चयो तो एहतजाज पीटीआई जो हक है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज वारन अफवाहुनि जी मज़म्मत कयूं था। जमात इस्लामी जल्द मुख्तलिफ़ शहरनि में भी जलसा कंदी। बलोचिस्तान के शहर डेरा बुख्टी में जिले चेयरमैन के घर से हमलो। जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारजी वया, 6 गिरफ्तार। अमन फोर्स जो एक रजाकार भी शहीद थी वयो, 3 जख्मी। दुक्की में रोड तामीर कंदड़ कंपनी के कैंप से दहशतगर्दन जो हमलो, 18 पोर तक हुआ। फायरिंग की डेवट दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद थी वयो, 2 जख्मी। पाक बेरिया के अरबी समुंड में कार्रवाई, वे मकदार में मंशियात पकड़े वरती। ISPR मूजिब पाक नेवी के जहाजन हुनैन यरमुक के अरबी समुंड में दौरान 2800 किलो का मंशियात पकड़ी है। समुंड में शक्की बेड़े की तलाशी दौरान गुजन खानन में लिकायल मंशियात मिली। नेवल चीफ पारा अमले की आला पेशे वरान सलाहतुन की सारा। पकड़ियल मंशियात की आलमी मार्केट में मालियत अटकल 75 करोड़ रुपया है।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: इन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खां अलावा अगरि इहे राइट जेके आहिनि त वायोलेट थियनि था त कहिड़ी जेके लीगल रेमेडी आहे उहा मौजूदु हूंदी आहे इन टॉपिक ते असां अॼु जे हिन प्रोग्राम में गुफ़्तगु कंदासीं. असांजे स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ी साहब मौजूदु आहिनि जंहिंजी तरफ़ मां हलंदुसि ऐं शहबाज़ हफ़ी साहब जे बारे में अव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां बल्कि अव्हां अवेयर आहियो. शहबाज़ साहब तक़रीबन 10 ईयर्स सां वठी इन लीगल प्रैक्टिस सां वाबस्ता आहिनि एज़ वेल एज़ रोड़ी जे रॉयल लॉ कॉलेज में लेक्चरार बि आहिनि, प्रोफेसर आहिनि, उते लेक्चरार बि आहिनि ऐं लीगल बल्कि लॉ जे बारे में हिननि खे तमामु सुठी नॉलेज आहे जेका असां प्रोग्राम में हिननि जी वठण जी भरपूर कोशिशि कंदा आहियूं. शहबाज़ साहब जी तरफ़ हलण खां पहिरियां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त तव्हां प्रोग्राम में लाइव कॉल बि असांखे करे सघंदो पंहिंजा सवाल ऐं लीगल कंसल्टेशन तव्हांखे घुरिजे अबाउट द टॉपिक, तव्हांजा कुझु क्वेरीज़ हुजनि त असां तव्हांखे मौक़ो ॾींदासीं प्रोग्राम में शामिलु थियण जे लाइ.

0: जो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03-000-11-3488। तर शेवा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टुडियोस।
1: वालेकुम सलाम बाबर, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे?
0: अलहमदिल्ला, तव्हां कीअं आहियो शहबाज़ साहब? ठीकु आहियो, ऐं माशाल्लाह तव्हांजी मसरूफ़ीअ जेकी आहे त तमामु घणी वधी पई। असां सोशल मीडिया ते बि ॾिसूं पिया, रॉय लॉ कॉलेज में जेको आहे त तमामु घणा एग्ज़ाम्स हलनि पिया, सेमेस्टर्स हलनि पिया, त कीअं पियो अव्हांजो वक़्तु गुज़रे, स्पेशली रॉय लॉ कॉलेज में?
1: तमामु बहितरीन, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर हेयर वंस अगेन। ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे त तव्हांजे यूनिक टॉपिक्स खे ॾिसी करे अॼु तव्हां वरी मूंखे फैमिली लॉज़ जो टॉपिक ॾेई छॾियो आहे।

0: जी जी
1: तो चंदन, द कैप्टन ऑफ द शिप
0: यस
1: मिस्टर खलील अहमद मेहमान साहब इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई एवर मीट इन माई लाइफ.
0: यस
1: उन सा गड सर जहांगीर साहब बोथ आर तमाम मां छा तारीफ़ क्या. छोकि मौला जो बि फ़रमान आहे तारीफ़ जेकी आहे न मुंहं ते ॾकजे त बहितर आहे. छोकि तारीफ़ दिलनि में थींदी आहे अलहमदिल्ला. सो तमामु प्यारा माण्हू ऐं रॉयल लॉ कॉलेज जी रिट ऐं रॉयल लॉ कॉलेज जी बैकबोन आहिनि जेके संभाले वेठा आहिनि. प्लस उन सां गॾु जेकी फैकल्टी असांखे मिली आहे गॾु इंक्लूडिंग मी ऐं तव्हांजे प्रोग्राम में तमामु सुठा टीचर्स बि अची चुका
0: आहिनि,
1: जंहिंमें मां नालो बि खणंदुमि कुझु. सर मुश्तबा
0: साहब
1: लाल साहब बि अची
0: विया,
1: ॿिया फैकल्टी मेंबर बि
0: आहिनि.
1: कॉलेज खे बहितरीन तरीक़े सां संभाले वेठा आहिनि, हलाए वेठा
0: आहिनि. स्पॉन्सरशिप खलील साहब सां जेका डिस्कशन हले पई जे कॉलेज खे, जेको
1: मां इंतज़ार कंदुमि त तव्हां अचो ऐं पूरी फैकल्टी खे हिते घुरायो, इंक्लूडिंग सर खलील साहब ऐं जहांगीर साहब, जीअं उहो पंहिंजे कॉलेज जे बारे में तव्हांखे अञा बहितर खां बहितरीन ॿुधाए.
0: यस इनशाला ताला. सो बिल्कुलु व्यूअर्स, रॉयल लॉ कॉलेज जे सखर बल्कि रोड़ी में आहे ऐं पूरी सखर डिवीज़न में तव्हां सुठो जेको आहे त उते तव्हां लॉ जे बारे में, बल्कि लॉ में एडमिशन तव्हांखे घुरिजे एल एल बी में, त तव्हां उते करे सघो था. इन इन मुतालिक़ फर्दर असां तव्हांखे प्रोग्राम में ॿुधाईंदा रहासीं रहंदासीं नेक्स्ट प्रोग्राम्स में आफ्टर द स्पॉन्सरशिप एस वेल. सो टॉपिक ते असां अचूं पिया. सो असांजो अॼु जो टॉपिक आहे सर फैमिली लॉज इन पाकिस्तान, खुला डाइवोर्स एज़ वेल एज़ फैमिली राइट्स. सर सभ खां पहिरियां त मैरिज लाइफ खां बाद में बेसिक राइट्स कहिड़ा आहिनि हस्बैंड जा एज़ वेल एज़ वाइफ जा?
1: बाबर, फैमिली लॉज पाकिस्तान में बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट लॉज. माना असां ईअं चवंदो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, 1965, 1964, 1961, इहे कलेक्टिव मिलाए करे जेको आहे न फैमिली लॉज ठहंदा आहिनि, जंहिंमें असांजा हिंदू मैरिज एक्ट बि था अची वञनि, क्रिश्चन मैरिज एक्ट बि अची था वञनि, ब्राइडल गिफ्ट्स बि अची था वञनि, डावरी आर्टिकल्स, मेंटेनेंस, उन्हनि सभिनि जी कंपाइलेशन खे असां चवंदा आहियूं फैमिली लॉज. ऐं हिन जे लाइ हिकिड़ी स्पेशल कोर्ट्स ठाही वियूं आहिनि जेके फैमिली कोर्ट्स चवंदा आहिनि, ऐं हिन जा स्पेशल जजिस हूंदा आहिनि जेके असां फैमिली जजिस चवंदा आहियूं. उनजो पर्टिकुलर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो मेन फोकस इहो हूंदो आहे टू डील विद दीस काइंड ऑफ इशू दैट हैज़ बिन क्रिएटिड ड्यूरिंग आफ्टर द मैरिज. मैरिज खां पोइ जीअं तलाक जो इशू थी वञे थो, मेंटेनेंस जो इशू थी वञे थो, डावरी आर्टिकल जो इशू थी वञे थो, ब्राइडल गिफ्ट जो इशू थिए थो पियो. सो उन इशूज़ सां पर्टिकुलर डील करण जे लाइ दीस कोर्ट्स एंड दीस जजिस हैव बीन क्रिएटेड बाय द प्रोविंशनल गवर्नमेंट.
0: ऑलराइट सर, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई तलाक जे बारे में, त ॿुधाईंदा आहियो तलाक आहे छा, डाइवोर्स आहे छा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ?
1: असांजे हर माशरे में जंहिंमें सोसाइटी में असां रहूं था, असां सभिनि खे ख़बर आहे तलाक छा आहे, कुला छा आहे. पर बेसिक नॉलेज लॉ जे पॉइंट ऑफ व्यू सां सिर्फ़ु मां ॿुधाईंदो हलां फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, के कुला उहा शइ आहे जेकी हिकिड़ी वाइफ सीक कंदी आहे, वठंदी आहे हस्बैंड खां थ्रू द कोर्ट, के आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ माई हस्बैंड फर्दर मोर. कुझु कंडीशन्स, कुझु हालात उन में अहिड़ा क्रिएट थींदा आहिनि जंहिंजे करे जेकी रिलेशनशिप्स आहिनि उहो टॉक्सिक थी वेंदा आहिनि. उन टॉक्सिक रिलेशन्स खां बचण जे लाइ वुमेन गेट्स सेपरेशन थ्रू द कोर्ट फ्रॉम हर हस्बैंड. ऐं तलाक डाइवोर्स बि चवंदा आहियूं, तलाक बि चवंदा आहियूं. इट इज़ अ बेसिकली काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंस या सोशल सेपरेशन बाय द हस्बैंड टू कीप हिज़ वाइफ अवे, के उन रिलेशन्स खे वधीक अञा ज़हरीलो करण खां बहितर आहे त माण्हू डिस्टेंस क्रिएट करे छॾे ऐं घरवारी खे तलाक ॾेई छॾे. मतिलबु बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ सेपरेशन. हुते सिर्फ़ु वुमेन थ्रू कोर्ट वठे थी, हिते मुड़ुस खे डिस्क्रिशनरी आहे की पंहिंजे हस्बैंड खे कंहिं बि सिचुएशन में अगरि ॾिसे थो वर्स्ट सिचुएशन आहे त पंहिंजे घरवारी खे तलाक ॾेई सघे थो.
0: ठीकु आहे सर, टॉपिक ते पाण अचूं पिया, डिस्कस कयूं पिया. अवां जी प्रैक्टिस आहे 10 सालनि खां अची लॉ में.
1: थोरो मां एड कंदुमि हिन में, छोकी हाणे हाणे 1.5 साल थी विया,
0: बल्कि शुरू में बि तव्हांखे चई त हस्बैंड जा ऐं वाइफ जा जेके अंदरि राइट्स आहिनि, अक्सर हस्बैंड वाइफ जेके इन्हनि खां अनअवेयर हूंदा आहिनि. ठीकु आहे, ऐं जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इलाही माण्हुनि खे ख़बर आहे तलाक छा आहे, पर काफ़ी इनखे इहो ख़बर न आहे त डिफरेंस छा आहे, खुला में छा आहे, डाइवोर्स में छा आहे डिफरेंस. त असां चाहींदासीं अॼु जे प्रोग्राम में स्पेशली असांजा उहे व्यूअर्स फ़ाइदो वठनि ऐं बेसिक राइट्स जे बारे में ख़बर पवनि, ऐं तव्हां जेको रूट कॉज बि असांखे ॿुधायो त डाइवोर्स जे पुठियां या खुला जे पुठियां कहिड़ो रूट कॉज आहे, जंहिं वजह सां जेको आहे इहो रेशियो वधंदो पियो वञे.
1: ॾिसो, पहिरों त मां ईअं चवां त के असां नंढे हूंदे खां ॿुधंदा आहियूं त जेके रिश्ता आसमान में ठहंदा आहिनि उहे सेलिब्रेट हिते थींदा आहिनि वॾी मुहबत सां, प्यार सां, घोटु कुंवारु वरी ब फैमिलीज जो पाण में मिलण वरी उन्हनि जी हिकिड़ी प्यार ऐं मोहबत ऑल ऑफ सडन कुझु अहिड़ा एलिमेंट्स क्रिएट थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे जेको रिलेशन सोर थी वेंदा आहिनि।

0: उन रिलेशन मां मिठास ख़तम थी वेंदी आहे. जॾहिं मिठास ख़तम थींदी आहे त पोइ रिलेशन सेपरेशन ते हलिया वेंदा आहिनि.
1: ओके,
0: अगरि फैमिली शादी थियण खां पोइ हस्बैंड ऐं वाइफ जा हिक ॿिए जे मथां म्यूचुअल राइट्स आहिनि.
1: ओके,
0: जंहिंजे करे ॾिसो न उनखे असां छा चयूं था, बेटर हाफ. औरत खे बेटर हाफ चयो वियो आहे ऐं मुड़ुस खे उनजो निगेबान, प्रोटेक्टर ऐं गार्डियन चयो वियो आहे. ठीक, नेचुरल गार्डियन मां बि हिकिड़ो लफ़्ज़ अचे थो पियो, त माना हस्बैंड बि पंहिंजी औरत जो नेचुरल गार्डियन, पंहिंजी घरवारी जो नेचुरल गार्डियन आहे. हाणे औरत जा छा हक़ आहिनि पंहिंजे हस्बैंड जे मथां, के उहो उनखे सेफ्टी ॾींदो, उनजो ख़्यालु रखंदो, अगरि उनजी एजुकेशन न आहे त एजुकेशन पूरी कराईंदो, उनखे मेंटेनेंस ॾींदो, उनजो जेतिरा बि उनजी बेसिक नेसेसिटीज़ आहिनि, जंहिंमें तव्हांजी क्लोथिंग थी वई, फूड थी वियो, तव्हांजी जेकी इवेंट्स थी आहे, ईद जा सेलिब्रेशन्स थी आया, या खाधो पीतो, शादी मुरादी, जेके असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं, उन्हनि जे जेकी बि चवजे त जेको बि मेंटेनेंस आहे, उहो हस्बैंड जे मथां ऑब्लिगेशन आहे, उनजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू फुलफिल देट थिंग्स. ईअं ई वुमेन जी जेकी जीअं मर्द औरत जे मथो छा थो राइट्स थो रखे, की औरत जो कमु आहे त पंहिंजे मुड़ुस जे जेतिरा बि उनजी डेली लाइफ में ख़्यालु रखणु, उनजे ॿारनि जो ख़्यालु रखणु, उनजे घर वारनि जो ख़्यालु रखणु ऐं रिलेशन्स खे जेको आहे न बहितर खां बहितरीन करे रखणु. मुड़ुस जी अगरि कुझु मिसाल सपोज़ अगरि मुड़ुस जी हालातनि ऐं कंडीशन खे ॾिसी करे उन सां हलणु, अननेसेसरी डिमांड्स न करणु, ऐं एज़ पर इस्लामिक लॉज या एज़ पर जेकी सोसाइटी असांखे जेकी लिमिट्स ऐं कंडीशन्स ॾिनियूं आहिनि उन ते पूरो लहणु, दीज़ आर द राइट्स ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ, हिक ॿिए जे मथो जेके उन्हनि जा राइट्स आहिनि.
1: ऑल राइट, हाणे सिर्फ़ु वजह थी अचूं पिया, रीज़न्स थी अचूं पिया, इहो तलाक या जेको आहे त खुला ऐं डाइवोर्स, इन जे पुठियां रीज़न छा हूंदो आहे?
0: बाबा, रीज़न घर जा हालात. सपोज़ अगरि हिकिड़े मुड़ुस जी पघार 40,000 आहे ऐं वाइफ डिमांड करे थी त मूंखे ज्वेलरी बि खपे, मूंखे ब्रांडेड कपिड़ा बि खपनि, मुंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट स्कूल में बि पढ़णो आहे, मूंखे गाॾी बि खपे, बंगलो बि खपे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐं कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे त असां शादी खां अॻु में एक्सपेक्टेशन्स इलाही वधाए छॾंदा आहियूं, त तव्हांजी घर न्याणी सुखी रहंदी, घर अलॻि मिलंदो, कमिरो अलॻि मिलंदो, उनखे रहणी करणी अलॻि मिलंदी, ठीकु आहे, ऐं उनजी हर ज़रूरियात पूरी कंदो. अगरि सपोज़ को स्टडी करणु चाहे थी, फर्दर स्टडी बि कंदी, माना उनखे रोक टोक न हूंदी ऐं उनखे हिकिड़ो बहितरीन माहौल मिलंदो. पर बनिस्बत कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे, सॼी कंडीशन्स डिफरेंट निकिरंदी, उहे शयूं बि जेको आहे न जनरेट कंदियूं अॻिते हली करे इन सिचुएशन्स खे.
1: ऑल राइट, ऐं सर, जीअं वर्बली तलाक जीअं हूंदी आहे या हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे, असां चाहींदासीं तव्हां प्रोसेस ॿुधायो असांजे व्यूअर्स खे, त डाइवोर्स जो प्रोसेस छा आहे ऐं खुला जो प्रोसेस छा आहे, कीअं वठी सघिजे थो?
0: खुला लाइ त एतिरे क़दुरु चयो वियो आहे बाबर, के अगरि औरत इहो बि चए न त मूंखे मुंहिंजे मुड़ुस जो चहिरो ई नथो वणे, त शी डिज़र्व टू बी सेपरेटिड बाय हर हस्बैंड. अगरि चए थी मूंखे मुड़ुस जो माना घुमणु फिरणु करणु मूंखे मुड़ुसु वणे ई नथो पियो, त उहो सीख करे सघे थी. पर
1: अच्छा, हिन में अक्सर जेको आहे जहिड़े में त मतिलबु
0: सिंपल मां सिंपल कंडीशन, कंहिंखे सम्झाइण लाइ, अगरि मिसाल बींगे मां टीचर आहे, अगरि कंहिंखे मां सम्झायां, बींग एडवोकेट, कोई मूंखां क्लाइंट सलाह थो वठे, त साईं कुला जी सिंपल मां सिंपल जेकी आहे न कंडीशन छा हुजे, उहो सिंपल मां सिंपल कंडीशन बि इहा थी सघे थी, आई डोंट लाइक
1: All right.
0: I don't like it. मूंखे नथो वणे, त इहे ई काफ़ी आहे कंडीशन खे कुला ग्रांट करण जी. पर कुला जी कुझु शर्तनि, 8 खां 9 कंडीशन्स आहिनि जिते अगरि पूरियूं फुलफिल थियनि थियूं पियूं, जंहिंमां मां 3 या 2 या 3 मेजर्स ॿुधाए थो छॾां, जेकी असांजे टाइम शॉर्ट हुजण जे करे मां ॿुधायां थो. सभ खां पहिरियों के हस्बैंड जी क्यूरियलिटी, हस्बैंड पंहिंजी घरवारी जे मथां ज़ुल्म थो करे, ठीकु आहे, उनखे अननेसेसरी मार कुट करे थो, उनखे जबरन फैमिली मेंबर में नथो वञणु ॾिए, शादियुनि में नथो वञणु ॾिए, या पंहिंजी फैमिली में इंटरेक्ट करणु नथो ॾिए, ज़ुल्म करणु. ॿियो मुड़ुस जी इंटॉक्सिकेशन, मुड़ुसु मुसलसल ड्रंकर आहे, शराब नोशी करे थो पियो, जुआ खेॾे थो पियो, शराबूं पीए थो पियो, घरवारी खे मेंटेन करण जे बजाए सॼो पैसो ॿाहिरि उॾारे थो पियो, घर में कुझु प्रोवाइड नथो करे, ऐं उन जी जेकी माली हालात आहे, सोशल इकोनॉमिकल जेकी कंडीशन आहे हिन जी लेडीज़ जी, उहा तमामु वर्स्ट खां माना थींदी थी वञे, वर्स्ट खां वर्स्ट थींदी वञे. उन सिचुएशन में बि औरत चाहे त कुला ग्रांड, कुला वठी करे पंहिंजी नई लाइफ क्रिएट करे सघे थी, शुरू करे सघे थी. उन खां अलावा 2 कंडीशन्स ॿियूं बि आहिनि, या मिसल प्रोलोंग हस्बैंड आहे त लॉ सां टॉपिक ई, अगरि प्रोलोंग अगरि हस्बैंड पंहिंजी मैरिड टेल शयूं अगरि पूरियूं नथो करे सघे, छोकी मां शो लाइव थो वञे थोरो पब्लिकली, मां हुनखे सम्झण वारनि जे लाइ
1: शेयर,
0: अगरि मैरिटल जेकी सिचुएशन्स आहिनि उहो फुलफिल नथो करे पियो ऐं वुमेन मुसलसल कंप्लेन करे थी पई, उन सिचुएशन में बि औरत खे इजाज़त आहे त कुला वठी सघे थी पई. या कॾहिं कॾहिं मर्द अगरि औरत खे माना फोर्स करे थो पियो, दीज़ आर द कंडीशन ऑफ द कुल्ला, फोर्स करे थो पियो कि इलिसिट रिलेशन्स क्रिएट कयो या जेका न ग़लति अन इस्लामिक वेज़ अडॉप्ट कयो, त उन सां छा थींदो, अगरि औरत चाहे थी, अगरि औरत चए थी त न मां पंहिंजे मज़हब खां या मां पंहिंजे अन इस्लामिक वेज़ खां माना अन इस्लामिक वेज़ ते न हलंदुमि, मां पंहिंजी हिकिड़ी सुठी ज़िंदगी गुज़ारींदुमि, ऐं मुड़ुसु हुनखे फोर्स करे थो पियो त इहे शयूं तूं कर, त उन सिचुएशन में बि जेका न औरत मुड़ुस खां तलाक वठी सघे थी पई, ठीकु आहे, ऐं या मुड़ुसु 7-8 साल 9 साल एब्सेंट आहे, घर खां निकितल आहे, उनजी नो हाउस ई न आहिनि, कहिड़ी सिचुएशन में आहे, किथे आहे, इन सिचुएशन में बि औरत जेकी आहे न तलाक क्लेम करे सघे थी पई, उहो कुला क्लेम करे सघे थी पई, ऐं ॿियो प्रोलोंग या मुड़ुस तवील बीमारी में, इलाही तवील बीमारी में आहे, उन सिचुएशन में बि जेके आहे न औरत क्लेम करे सघे थी, या हस्बैंड कंहिं जेल में आहे, अलाए 7-8-9 साल गुज़री चुका आहिनि, ॿाहिरि निकिरण जा चांसिस ई न आहिनि, उन सिचुएशन में बि औरत तलाक औरत कुला क्लेम करे सघे थी। बाक़ी सिंपल तलाक जो जेको आहे, सिंपल असां मेजोरिटी खे अगरि असां ॾिसूं त अहिल तशी ऐं अहिल सुनत में कॉन्सेप्ट तलाक जो डिफरेंस आहे, त अगरि असां अहिल सुनत जे कॉन्सेप्ट खे वठी करे हलूं था पिया त मेजोरिटी जेकी असांजी आहे अहिल सुनत सां बिलोंग करे थी पई, त असां वटि तव्हांखे ख़बर आहे टिनि क़िस्मनि जी तलाक थींदी आहे, तलाक एसन, तलाक एसन, तलाक बिदत आहे, ठीकु आहे, त उन में छा थींदो आहे त डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट तरीक़े सां हस्बैंड तलाक प्रोनाउंस कंदो आहे, जेकी असां वटि मोस्ट ऐं मेजर जेकी कॉमन आहे उहा तलाक बिदत आहे,
1: ते
0: माना 3 टाइम प्रोनाउंस करे छॾणु ऐं हिकिड़ो लिखत में घरवारी खे नोटिस जे शुरू उन तलाक डीड जेके असां चवंदो या डाइवोर्स डीड जी शकल में ॾेई छॾणु, त उन में छा थींदो आहे त तव्हांखे पंहिंजे वाइफ खे नोटिस बि ॾियणो हूंदो आहे, तलाक डीड हुनखे ॾियणी हूंदी आहे, हिकिड़ो नोटिस तव्हांखे चेयरमैन यूनियन काउंसिल खे बि ॾियणो हूंदो आहे, जंहिंजे नतीजे में विद इन 90 डेज़ में एज़ पर असांजो जेके फैमिली लॉज़ आहिनि जंहिंमें सेक्शन 7 आहे, मुंहिंजो सब क्लास 3 and 5 चए थो पियो, त 90 डेज़ जो टाइम हूंदो आहे जंहिंजे अंदरि अगरि हस्बैंड या वाइफ प्रो नशे खे रिवोक करणु चाहिनि विद इन 90 डेज़ में, छोकि यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल ठहंदी आहे, आर्बिट्रेशन काउंसिल असां पढ़ी चुका आहियूं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में पढ़ी न चुका
1: आहियूं,
0: प्रोग्राम करे चुका आहियूं, त उनजो पर्पज़ इहो हूंदो आहे त मामलात खे सुठे तरीक़े सां डील करण जे लाइ यूनियन काउंसिल में चेयरमैन छा कंदो आहे, हिकिड़ी आर्बिट्रेशन काउंसिल विहारींदो आहे ऐं कोशिशि कंदो आहे त मां हिनखे सलाह जी तरफ़ खणी वञा, अगरि सलाह नथी थिए विद इन 90 डेज़ में जेकी तलाक आहे उहा इफेक्टिव थी वेंदी, माना तलाक डिक्लेयर थी वेंदी।
1: ऑल राइट,
0: दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कुला एंड द तलाक
1: डाइवोर्स। ऑल राइट, सो बिल्कुल प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जारी आहे, हींअर असां हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं, असां सां गॾु रहिजो।

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे।
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: था. सर असां ब्रेक ते वञण खां पहिरां खुला आहिनि डाइवोर्स ते हुयासीं. कुझु केसिस सर अहिड़ा ईंदा आहिनि जीअं मां ॻाल्हि कयां त जेके आहिनि वाइफ जेके आहिनि हस्बैंड खां नाराज़ थी करे वञी सावरे रहंदियूं आहिनि, ऐं इन ड्यूरेशन खे तमामु घणो टाइम थी वेंदो आहे. हस्बैंड बि कंफ्यूज़ हूंदो आहे या थियणो छा आहे, ऐं वाइफ जेको आहे न वापसि अचण जो को सोचींदी न आहे त मूंखे वापसि वञिणो आहे. त इन सिचुएशन में जेको आहे त कहिड़ी लीगल रेमेडी आहे या कोर्ट ते वञण खां पहिरां, ADR बि असां ADR ते बि प्रोग्राम करे चुका आहियूं, त अवां छा सजेस्ट कंदा त इन मसइले खे कीअं जेको आहे टैकल करे सघिजे थो?
1: तव्हां माशाल्लाह सां बाबर प्रोग्राम करे करे हाणे पाण बि एक्सपर्ट थी विया
0: अलहमदुलिल्लाह.
1: पाण ई ॾियो था पिया ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन. इहा मोस्ट कॉमन यूज मेथड आहे, अॼुकल्ह हर जॻह ते इस्तेमालु थिए थो पियो, ऐं पाकिस्तान में बख़ुसूस पाकिस्तान में इलाही इन ते फोकस कयो थो वञे टू रिज़ोल्व द इशूज़ वेरी क्विकली, के कोर्ट जे मथां बर्डन घटि थिए, ऐं जेके न जेके क्लाइंट्स या जेके अचनि था पिया कोर्ट्स में उन्हनि जो बि प्रेशर ऐं प्लस में उन्हनि जा बि मसला टाइमली जेको आहिनि हल थी वञनि. ॾिसो ADR में मां प्रोग्राम ब्रेक ते वञण खां अॻु में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो त यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल्स ठहंदियूं आहिनि. हाणे ई ॻाल्हि अचे थी त रुसी थी वञे ऐं जेको आहे न मर्द अप्रोच बि नथो करे. सभिनि खां तव्हांखे शायदि यादि हूंदो जॾहिं मां गार्डियन वारो जॾहिं प्रोग्राम कयो त उन में हिकिड़ो लफ़्ज़ उन में हिकिड़ी कुझु पॉइंट्स मां रेज़ कया. उन में इहो चयुमि त जेकॾहिं शादी कराइण खां वठी करे निकाह ताईं जॾहिं फैमिलीज़ गॾु आहिनि त उन में जॾहिं फैमिली जॾहिं ड्यूरिंग शादी जे अंदरि प्रॉब्लम्स था थियनि पिया त उते गॾु छो न आहिनि? जॾहिं मेहंदी में गॾु आहिनि, वनवा में गॾु आहिनि, निकाह में गॾु आहिनि, वलीमनि में गॾु आहिनि, सतावड़े में गॾु आहिनि, त पोइ जॾहिं हस्बैंड ऐं वाइफ जे विच में मसला थियनि था पिया त उते बि उन्हनि जो रोल सुठो प्ले थियणु खपे न. सिर्फ़ु ॿिनि घरनि जे विच में रोल न हुजे. अगरि मिसाल ॿ घर आहिनि, फैमिलीज़ आहिनि, त उन में जेको चाचो आहे, मामू आहे, पाड़े वारो आहे, अगरि कोई बि सम्झे थो त हिन ॿा हिन फैमिली खे या हिन विच में मां अची करे प्रॉब्लम खे सोल्व करे सघां थो. पाड़े वारे में मुराद मां इहो कॉन्सेप्ट खणंदुमि त जेके क्लोज़ हूंदा आहिनि फैमिली जे, चालीह चालीह साल, पंजाह पंजाह साल जंहिंजो रिलेशन्स थी वेंदो आहे, जॾहिं ॿ घर पाण में कनेक्टेड हूंदा आहिनि त लाज़मी हिक ॿिए खां परे न हूंदा आहिनि. अगरि हुनजो बुज़ुर्ग बि अगरि चाहे त हिन घर जा हालात ख़राब था थियनि, फैमिलीज़ टुटनि थियूं पाण में, त उहो बि हिकिड़ो रोल प्ले करे सघे थो पियो. पाण लोकेलिटी जो मौलवी रोल प्ले करे सघे थो पियो त हिन जो रिश्तो, हिन जो रिलेशन्स, त असां जेको आहे न तलाक या कुल्हा ते वञण खां बहितर आहे असां ई सॉर्ट आउट कयूं. त मुंहिंजी सजेशन इहा ई हूंदी, एडवाइज़ इहा ई हूंदी की अगरि हेॾी सिचुएशन क्रिएट थिए थी पई त उनखे वर्स्ट करण जे बजाए, उनखे कॉम्प्लिकेटेड करण जे बजाए ॿिनि धुरियुनि खे विहारे करे उनजी टर्म्स ऐं कंडीशन डिसाइड करे हस्बैंड ऐं वाइफ खे हिकिड़े लाइन ते, हिकिड़े पेज ते आणणु खपे. जंहिंजो सिंपल मेथड आहे ADR, मीडिएशन थी सघे थी, आर्बिट्रेशन थी सघे थी, नेगोशिएशन थी सघे थी, reconciliation thi sake, these are the major terms that are being used in the arbitration system. So mujhe suggestion to ye hai ta har un family member ke panjo role play karan khape jeke shaadin mein gaddan.
0: okay so live caller ji tarfa sa halanda si, let's see line take ke rahe number mana uske aap yo 03000 11 3488. ji assalam alaikum. सो बिल्कुल प्रोग्राम में कुझु सिग्नल्स इशू आहिनि, तव्हांखे मां रिक्वेस्ट कंदुसि त तव्हां अहिड़े लोकेशन ते बीह करे कॉल कयो जिते अव्हां वटि नेटवर्क जा सिग्नल्स कंप्लीट हुजनि, त जीअं अव्हांजो आवाज़ क्लियर असां ताईं पहुचे. लीगल कॉर्नर प्रोग्राम आहे जंहिंमें अव्हां लाइव कॉल जे लाइ नंबर डायल करे सघो था 03000 11 3488. सर खुला ऐं डाइवोर्स जे बारे में तव्हां ॿुधायो, ADR जे बारे में जेको आहे त फैमिली खे जेको आहे त फैमिली जे वॾनि खे जेको आहे त रोल प्ले करणु घुरिजे, त जीअं ज़रूरी आहे. सर मेंटेनेंस ते हाणे असां अचूं पिया, उहा कीअं जेकी आहे त मेंटेन करे सघिजे थी हस्बैंड पारां?
1: मेंटेनेंस बाबर अगरि वाइफ जो हक़ आहे बेसिकली पंहिंजे मुड़ुस जे मथां की हुन खां उजर वठी सघे थी, मेंटेन माना मेंटेनेंस मां मुराद सिर्फ़ु पैसो न आहे.
0: जी
1: मेंटेनेंस मां मुराद इहो आहे त हर उहा बेसिक नेसेसिटी हस्बैंड वाइफ जी फिल करे जेकी उहा हुनजे मथां फ़र्ज़ु आहे. उनमें लटो, कपिड़ो, एजुकेशन, अगरि वाइफ अगरि इजाज़त वठणु चाहे त मां नौकिरी बि करणु चाहियां थी त हस्बैंड अगरि राज़ी आहे त उनखे उनजी बि इजाज़त ॾिए, पंहिंजे उनखे छोकिरी खे अगरि चाहे त पंहिंजे घर वञण जी बि इजाज़त ॾिए. उनजी जेकी बि बेसिक ज़रूरियात आहिनि, बेसिक नेसेसिटीज़ आहिनि, उहे मुड़ुस जे मथां फ़र्ज़ आहिनि, उनखे चइबो आहे मेंटेन करणु. ठीकु आहे, पोइ उहा पैसे जी शकल में बि थी सघे थी ऐं फिज़िकली अगरि मर्द चाहे त औरत खे पाण बि मेंटेन करे सघे थो पियो.
0: ठीकु आहे, हाणे सर इन सिचुएशन में जेको आहे त मेंटेनेंस हस्बैंड खे ॾियणी आहे, जीअं मिसाल ॻाल्हि कई त वाइफ जेकी आहे त रुसी करे वञी सावरे वेठी आहे ऐं ड्यूरेशन वधी वियो आहे, ॿ टे साल थी विया आहिनि, त अच्छा मेंटेनेंस तॾहिं बि ॾियणी आहे,
1: मेंटेनेंस त ॾियणी आहे.
0: ओके,
1: मेंटेनेंस हस्बैंड जे मथां मैंडेटरी आहे. त अगरि औरत शादी करे आई आहे ऐं शादी कंज्यूम थी वई आहे, त हाणे उहा हुनजे मथां रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वई कि पंहिंजी घरवारीअ खे मेंटेन करे. मां ॾिसो रिपीट उहा ई ॻाल्हि कई,
0: रुसी वई त
1: रुसण खां पोइ बि ॾिसो न, रुसी वई आहे, रुसी वई आहे, तलाक थी आहे न, हुनखे परचाईंदो, डेफिनेटली वाइफ आहे. अगरि हुनखे मेंटेन कंदो, ॾिसो न हाणे रुसण जा रीज़न्स छा हूंदा.
0: रुसण जा तव्हां अहिड़ा केसिस ॾिठा आहिनि, मूं बि ॾिठा आहिनि, त रुसण खां बाद में जेको आहे न वाइफ पारां जेको आहे न तमामु घणियूं डिमांड्स कढियूं वेंदियूं आहिनि. स्पेशली तव्हां ॾिठो हूंदो त सेपरेशन घर जेको आहे त अलॻि था वठो ऐं हस्बैंड जेको आहे न अफोर्ड न करे सघंदो आहे. त इन सिचुएशन में हस्बैंड छा करे?
1: पहिरीं ॻाल्हि त बाबा ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त इहो त पहिरां त वॾा वॾा ख़्वाब ई न ॾेखायो तव्हां. चवंदा न बेस सुठी ॻाल्हि इहो ई आहे त मेन शुड रिमेन अटैच विथ रियलिटी. अगरि तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़े माण्हू जी पघार एतिरी आहे, तव्हां कंहिंखां रिश्तो वठो था पिया, त हुनखे वॾा वॾा ख़्वाब न ॾेखायो त बसि असां छोकिरे जे पोयां बीठा आहियूं, नियाणी असांजी
0: आहे,
1: नियाणी असां संभालींदासीं. शादी खां पोइ, सेज खां पोइ, ॿिए ॾींहुं ख़बर पई सतावड़े खां पोइ लकुम थी नकुम वली दीन, बाबा तव्हांजो रस्तो असां सां, हिननि जो रस्तो असां सां, ईअं न हुजणु खपे. तव्हां बेसिक रियलिटीज़ छोकिरे जी अॻु में ई ॿुधायो त मिसाल मुंहिंजो बचो आहे, मुंहिंजो पुटु आहे, या मुंहिंजो भाटियो आहे, मुंहिंजी भाटी आहे, या मुंहिंजो भाणे जो आहे, उनजी एतिरी सोर्स ऑफ इनकम आहे. अगरि तव्हांजी नियाणी उन में कम्फर्टेबल आहे, तव्हां कम्फर्टेबल आहियो त रिश्तो ॾियो. अदरवाइज़ तव्हां अगरि पंहिंजी नियाणी जो बहितरीन काथे रिश्तो करणु चाहियो त करे छॾो. असां जेके डे ड्रीम्स ॾेखारे छॾंदा आहियूं न, ख़्वाब वॾा वॾा ॾेखारे छॾंदा आहियूं, पोइ हुन रियलिटीज़ ते जॾहिं न बीहंदा आहियूं त पोइ रिश्ता ऐं हालात ख़राबु थींदा आहिनि. असांजी इस्लाम बि असांखे इजाज़त ॾिए थो, बल्कि दुनिया जो हर मज़हब इजाज़त ॾिए थो त जॾहिं बि हस्बैंड ऐं वाइफ जी शादी थी वञे त दे मस्ट रिमेन सेपरेटेड. उन्हनि खे हिकिड़ी अलॻि सेपरेट, अलॻि कमरो, अलॻि जॻह ॾिनी वञे त पंहिंजी हिकिड़ो लाइफ ऐं हिकिड़ो केरियर स्टार्ट करणु. ॿियो असां वटि हिकिड़ो कॉमन सेंस आहे, जीअं शादी थींदी त वालदेन खे ईअं लॻंदो आहे त बसि पुटु असांजे हथनि मां हले वियो. ठीकु आहे, छोकिरी जे ॿारनि खे ईअं लॻंदो आहे त असांजी नियाणी असां वटि ईंदी न. अगरि हस्बैंड बाए चांस अगरि पंहिंजी घरवारी खे कुझु स्पेसिफिक टाइम लाइ रोके थो पियो, या कुझु फैमिली मेंबर्स खे रेस्ट्रिक्ट करे थो पियो, भाउ मुंहिंजे घर में इन जो अचणु वञणु बंदि थिए, त औरत जे मथां बि आहे त उहा उनजी उन सिचुएशन खे सम्झे, अगरि पंहिंजी फैमिली खे, पंहिंजे घर खे सुठे तरीक़े सां मेंटेन करिणो आहे. हिन जो मक़सदु छा आहे, जे मां चयुमि बेटर हाफ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. हस्बैंड ऐं वाइफ में जेसिताईं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग न हूंदी, इहे प्रॉब्लम्स क्रिएट थींदा रहंदा. डिमांड्स इहे ई त हूंदियूं आहिनि. जॾहिं तव्हां वॾा वॾा ख़्वाब ॾेखारे छॾंदव, तव्हां हुन ख़्वाबनि ते पुॼी न सघंदव, त पोइ हालात वर्स्ट थी वेंदा आहिनि. पोइ रुस, पोइ रुसण, पोइ घर हलियो वञणु, पोइ फैमिली मेंबर्स जो पाण में जेको आहे न, उनजो रिलेशन्स पाण में ख़राबु थियनि. दीज आर द बेसिक बेसिक थिंग दैट क्रिएट्स सच काइंड ऑफ डिफरेंसिस, के औरत ऐं हस्बैंड जे विच में इहा तलाक कलामी थी वेंदी आहे.
0: अच्छा सर, अक्सर जेको आहे त निकाह जे टाइम जेको आहे न, इहे शरायत लिखाया वेंदा आहिनि त पापा अगरि वाइफ रुसी थी वञे त तव्हांखे हुन ॾंड में जेको आहे त एवरी मंथ एतिरी अमाउंट ॾियणी आहे, ऐं हू अफोर्ड न करे सघंदो आहे हस्बैंड, त हू छा उन जे लाइ लीगल को रस्तो आहे त उहा क्लेम करे सघे थी अगरि इहो शर्त लिखियल आहे?
1: वंस अगेन इहा ई ॻाल्हि कई त माली हालात, तव्हां कंहिंखां रिश्तो वठणु वञो था, हुनजी रियलिटी तव्हां हुनखे ज़रूरु ॿुधायो. हाणे हिकिड़े माण्हू जी सोर्स ऑफ इनकम आहे ई न, हिकिड़ो माण्हू हक़ महर एतिरो ॾेई नथो सघे. वरी तव्हां निकाह हिन में बि टर्म्स ऐं कंडीशन लिखारायो था त अगरि रुसी वेंदी त एतिरा ॾींदो, त ठीकु आहे. हिकिड़ो माना पेरेंट्स आहिनि पंहिंजी नियाणी जे लाइ सोचनि था, केयरफुल आहिनि कि सुभाणे अगरि कंडीशन हालात अगरि थी वञनि त असां वटि ऑलरेडी निकाहनामे में, छोकी निकाहनामो बि रजिस्टर थो थिए अॼुकल्ह निकाह रजिस्ट्रेशन एक्ट जे हिसाब सां, इहो बि हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री वैल्यू थो रखे, इहो बि हिकिड़ी स्टाम्प पेपर जी वैल्यू थो रखे पियो, छो की हुन में शायदि ऐं गवाह अवेलेबल हूंदा आहिनि. अगरि उहो लिखाए कॾहिं करे घर बि लिखाए वठंदा
0: आहिनि, सोन लिखाए वठंदा
1: आहिनि, उहो टर्म्स हेतिरी क़दुरु एतिरो बि लिखाराईंदा आहिनि. जेकॾहिं असांजी नियाणी चाहे त तोखां कुला बि वठी सघे थी पई, हुन में त हुनखे मना बि न कंदे. सो अगरि उहो लिखाराइनि था त दिस इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द ब्राइड. ब्राइड जे करे सेफ्टी ॾींदा आहिनि त असांजी नियाणी किथे सुख में हुजे, सुभाणे मामलात ऐं हालात ख़राबु थियनि त कुझु न कुझु क्लेम करे सघनि. बसि कुला ऐं तलाक में इहो फ़र्क़ु आहे, जेकॾहिं औरत कुला वठे थी पई त हुनखे पंहिंजो हक़ महर मुड़ुस खे ॾियणो पवंदो. अगरि हस्बैंड डाइवोर्स ॾिए थो पियो त पोइ हुनखे हक़ महर जेको बि
0: हुनखे
1: छॾिणो पवंदो, औरत खे विड्रॉ करिणो पवंदो, पोइ मुड़ुस खे ॾियणो पवंदो.
0: पोइस
1: पर निकाहनामा.
0: ऑल राइट सर, हाणे असां अचूं पिया चाइल्ड कस्टडी ते. आफ्टर डाइवोर्स, ख़ुदा न ख़ास्ता डाइवोर्स थिए पियो या खुला ई थिए पियो, त पोइ ॿार जेके आहिनि त उहे कंहिंजी कस्टडी में रही सघंदा? असां पहिरां बि प्रोग्राम
1: वार्डन गार्डन वार्ड में पाण करे चुका
0: आहियूं. तव्हां थोरो शॉर्ट में
1: इहो बाबति डिपेंड करे थो कि माली हालात ॿिन्हिनि मां कंहिंजा सुठा आहिनि. जीअं अगरि मिसाल कुला जी कंडीशन ते असां अचूं त मुड़ुसु ड्रंकर आहे, मुड़ुसु अलील आहे, बीमार आहे, प्रोलोंग इलनेस खां रखे थो पियो, इलिटरेट आहे, या उनजी उहा मेंटल कंडीशन स्टेबल ई न आहे त पंहिंजे ॿारनि खे संभाले. उन जॻह ते औरत, सपोज औरत सोशली स्ट्रॉन्ग आहे, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग आहे, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग आहे, मुड़ुस खां सुठो कमाए थी, सुठो सोर्स ऑफ इनकम अथसि ऐं पंहिंजे ॿारनि खां बहितरीन तालीम ॾेई सघे थी, त अगरि वाइफ चाहे त पंहिंजे ॿारनि जी कस्टडी पाण रखी सघे थी पई. इन निस्बत में अगरि और मर्द स्ट्रॉन्ग आहे पंहिंजी औरत खां ऐं औरत ॿी शादी करे छॾी आहे, त इन निस्बत में जेको पेरेंट आहे, जेको पीउ आहे, पंहिंजा ॿार क्लेम करे सघे थो गार्डियन वार्डनिक में.
0: अच्छा, उहा एज केतिरी हुजणु घुरिजे ॿार जी?
1: ॾिसो न, ॿार जी हूंदी आहे एज़ पर सुनी लॉ जे हिसाब सां 7 साल फॉर द छोकिरो ऐं 14 साल फॉर द गर्ल. छोकिरी जे लाइ 14 साल एज हूंदी ऐं जेको आहे न पुट जे लाइ 7 साल हूंदी. इन एज में जेको आहे न पीउ पंहिंजे ॿारनि जी कस्टडी क्लेम करे सघे थो.
0: ओके, ऐं अगरि हिन खां घटि एज में आहे, फॉर एग्जाम्पल
1: हाली हुनजी औरत जी, हाली हुनजी माउ जे हुन में ई रहंदा, पैटर्न में ई रहंदा, पैटर्नेज जेके चवजे, सरपरस्ती में रहंदा. पर डिपेंड करे थो त मदर जी कंडीशन कीअं आहे, छा फाइनेंशियली सोशल इकोनॉमिकली वीक त न आहे. अगरि उहो वीक आहे त कोर्ट अगरि चाहे थी, अगरि हस्बैंड आहे सेपरेट थी वियो आहे त उहो कोर्ट में एप्लीकेशन ॾींदो अंडर सेक्शन 25, जेके असां चवंदा आहियूं 7, 10, 17, 25, इहे हिकिड़ी सेक्शन्स आहिनि गार्डियन अवॉर्ड जा, जंहिंजे थ्रू पी पंहिंजी गार्डियनशिप क्लेम करे सघे थो ॿारनि जे लाइ. उन में इहे कंडीशन, असां कंडीशन्स इहे लिखंदा आहियूं के सोशली स्ट्रॉन्ग आहे, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग आहे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग आहे ऐं फाइनेंशियली बि स्ट्रॉन्ग आहे. पंहिंजे ॿारनि खे सुठी स्कूलिंग ॾेई सघे थो, क्लोथिंग ॾेई सघे थो, उनजी फीडिंग सुठी कराए सघे थो पियो, ठीकु आहे. उनजी जेको बि मेडिक आहे, उहो जेके असां मेडिसन्स चवंदा आहियूं, उनजी केयर सुठी करे सघे थो. काइंडली द चिल्ड्रन मस्ट बी हैंडिड ओवर टू द फादर. अगरि फादर वाइस वर्सा चवजे, अगरि फादर हुन कंडीशन ते न आहे त कंडीशन द कस्टडी शुड बी गिवन टू द मदर, छोकी दी बोथ आर द नेचुरल गार्डियंस.
0: ठीक आहे सर, हाणे हक में रहण अदर फाइनेंशियल असां राइट्स थी अचूं, डावरी आर्टिकल्स थी विया या हक में थी वियो, इन जे बारे में पाकिस्तानी लॉ छा पियो चवे?
1: क्लेम करे सघनि था. मां जीअं हाणे चयुमि त फैमिली लॉ
0: जे हिसाब सां जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त हिन जी छा लिमिटेशन्स आहिनि, छा हक़ में कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे शादी में त ज़ोरी जेको आहे त वधीक अमाउंट लिखारायो वेंदो आहे, जेको हस्बैंड एग्री न हूंदो आहे, चलो उहो लिखजी वियो त उनखां बाद में जेको आहे त
1: उनखां पोइ ॾिसो न, हाणे हक़ में केस दाख़िल थो थिए डावरी आर्टिकल्स जो या हक़ में जो केस दाख़िल थो थिए पियो, त अगरि क्लेम करे थी छोकिरी, क्लेम करे थी मुंहिंजो डावरी आर्टिकल्स हेतिरो हुयो, मुंहिंजो सोन हेतिरो हुयो, देन दे मस्ट प्रोड्यूस द एविडेंस.
0: एविडेंस ऑलवेज
1: उहो किथे थींदा? फैमिली कोर्ट में. उहे लिस्टूं ॾींदा, रसीदूं ॾींदा, ऐं जेको उहो क्लेम करनि था पिया, जंहिंमें निकाह नामो आहे, ओरिजिनल निकाह नामो ॾियणो पवंदो. इन्हनि सभिनि खे अॻियां रखी करे देन इट विल बी डिसाइडिड दैट द क्लेम दैट इज़ मेड बाय द ब्राइडल या ब्राइड जेको क्लेम कयो आहे, छोकिरी जेको कुंवार क्लेम करे थी, कुंवार न चवजे छोकिरी चवजे, अगरि उहो क्लेम करे थी त मुंहिंजो डावरी आर्टिकल्स एतिरो हुते पिया आहिनि, त सभ खां पहिरियों जेको आहे न शी हैज़ टू प्रूव दैट थ्रू डॉक्यूमेंटेशन. उनखां पोइ जज डिसाइड कंदो, जॾहिं हुनजी एविडेंस ईंदी, जज डिसाइड कंदो त वाकई उहो डावरी आर्टिकल्स हुते अवेलेबल आहे या न आहे. उनजे विच में हिकिड़ी असां एप्लीकेशन ॾींदा आहियूं कोर्ट में, त रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल जी, जेकी हिकिड़ो टेम्पररी ऑर्डर थींदो आहे के इन विच में जेतिरो बि अगरि सामान पियो आहे त उन में असां जेको आहे न बैलफ जेके असां नाज़िर चवंदा आहियूं, उहो अपॉइंट थींदो आहे, कमिश्नर अपॉइंट थींदो आहे के जेतिरो बि डावरी आर्टिकल्स जेको पियो आहे हुते एट प्रेज़ेंट उहो खणाए वठो. उन खां अलावा अगरि जेको नाहे अवेलेबल या यूज़ थी वियो आहे या शो नथा करनि पिया, उन ते पोइ सॼी हिकिड़ी एविडेंस लीड थींदी आहे के सर मैडम असांखे हेतिरो सामान मिलियो आहे ऐं हे सामान हिन असांजो लिखायो आहे. अमूमन छा थींदो आहे डावरी आर्टिकल्स में मेजर जेको सामान हूंदो आहे वॾो उहो मिली वेंदो आहे.
0: जी जी,
1: उन में नंढो नंढो मिसल क्लोथिंग थी वई, ॿिया सामान थी विया, मेकअप थी विया, या को अहिड़ो क्रोकरी जेके चवजे उहो यूज़ थी वेंदी आहे, त मेजर सामान असांखे मिली वेंदो आहे. 80% to 70% सामान जंहिंमें सोफा सेट, एसियूं वग़ैरह मिली वेंदियूं आहिनि, टीवी मिली, पर नंढो सामान न मिलंदो आहे. ऐं इन खां वधीक जेको मेजर सामान हूंदो आहे उहो हूंदो आहे गोल्ड.
0: जी,
1: ठीकु आहे न. त असली जेको मेन जेको कॉम्पिटिशन जेको हुते हलंदो आहे, जेको मेन कंटेस्ट जेके चवजे बिटवीन द पार्टीज़, उहो जेको मेन द बोन ऑफ कंटेंशन हूंदी आहे उहो हूंदो आहे ऑर्नामेंट्स.
0: ओके,
1: उहो ऑर्नामेंट डिसाइड करण में थोरो टाइम लॻी वेंदो, जंहिंमें तव्हांजी रसीदूं लाज़मी आहिनि, मैंडेटरी आहिनि, जेकी शो करनि त वाकई गोल्ड हस्बैंड ॾिनो आहे ऐं दे डज़ नॉट बिलोंग टू द ब्राइड या कुंवार या जेकी छोकिरी आहे जेकी तलाक़ या कुला वठणु चाहे थी, उनजो उन सां तालुक़ु नथी रखे पई.
0: ऑल राइट, सर ही त असां हिन ते तकरीबन असांजो तकरीबन टॉपिक जेको आहे कवर थी वियो आहे. डावरी आर्टिकल से असां अची वियासीं, हक मेयर ते अची वियासीं. इन खां अलावा जेको आहे त मिसकनसेप्शन्स आहिनि असांजी सोसाइटी में, स्पेशली खुला वठण लाइ जेका त हस्बैंड जी परमिशन लाज़मी आहे, इन मिसकनसेप्शन खे कीअं पिया ॾिसो?
1: खुला वठण जो पहिरीं ॻाल्हि त केरु चाहींदो त मुंहिंजी घरवारी मूंखां खुला वठे, पर अगरि हालात ऐं कंडीशन परमिशन ॾिसो न, अगरि म्यूचुअल परमिशन आहे
0: ऐं फोर्स कयो वेंदो आहे त खुला वठी वञे इंस्टीट्यूट ऑफ डाइवोर्स, त जीअं
1: मुड़ुसु कॾहिं बि. हा, पहिरीं ॻाल्हि त अगरि सपोज औरत खुला वठे थी त असां वटि मेजोरिटी 90% केसिस इहे हूंदा आहिनि त अगरि औरत खुला वठंदी आहे त हस्बैंड सिर्फ़ प्री ट्रायल, असां हुनखे चवंदो आहे कोर्ट में हिकिड़ो प्री ट्रायल थींदो आहे. वुमेन आई आहे क्लेम करे थी शी वॉन्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, वो क्लेम करे थी जज साहब के केस करे थी, सर आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ हिम. उन जे थ्रू जज साहब छा कंदा आहिनि, हिकिड़ो प्री ट्रायल जेको आहे न अरेंज कंदा आहिनि, जंहिंजो सोल पर्पज़ इहो हूंदो आहे कि वाट आर द डिफरेंसिस दैट हैज़ बिन क्रिएटिड बिटवीन द बोथ पार्टीज़, कि आख़िर वजह छा आहे कि लेडीज़ ऐं जेको आहे न हस्बैंड, लेडीज़ ऐं जेको आहे न हस्बैंड जे चइजे कि मुड़ुस ऐं घरवारी पाण में तलाक वठण जा रीज़न्स छा आहिनि. उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक कलाक, ॾेढ कलाक जंहिंमें जज एज अ जज न वेठो हूंदो आहे, बल्कि फैमिली मेंबर वांगुरु, हिकिड़ी सरपरस्त वांगुरु, हिकिड़ो पैट्रोनेज वांगुरु, अगरि मां हिनखे चवां त हिकिड़ी आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन काउंसिल वांगुरु इज़ अ हिकिड़ो रिप्रेज़ेंट कंदो आहे पाण खे, उन्हनि खां रीज़न्स पुछंदो आहे, वजूहात पुछंदो आहे, उनखे एतिरे क़दुरु सेटिस्फाई कंदो आहे कि बाबा विद इन वॉल, जीअं हाणे असां पॉडकास्ट में वेठा आहियूं, जीअं वॉल आहे पूरी कमरो बंदि लॻो पियो आहे, त जीअं उन विद इन वॉल में जज साहबु या जज लेडी हुजे या मेल हुजे, उहो पूरो स्पेसिफिक टाइम ॾींदा आहिनि. पहिरियों हस्बैंड खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾींदा आहिनि, अगरि कुल आहे त पहिरियों वाइफ खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾींदा, उनखां पूरी वजूहात पुछंदा, वरी उनजे रिब्यूटल में हस्बैंड खां साॻा ई सवाल कंदा त तव्हां हिन जे सवाल जा जवाबु ॾियो. उन सां छा थींदो आहे, जज जो माइंड क्लियर थी वेंदो आहे कि अगरि औरत तलाक कुला वठणु चाहे थी त हुनजा बेसिक जेकी पर्पज़ हुयो उहो इहो हुयो तलाक वठण जो. हस्बैंड खे चवंदा त तूं इन शयुनि ते छो न लथे, अगरि उन ई टाइम प्री ट्रायल जे टाइम अगरि हस्बैंड रिग्रेट करे थो, ग़लतियूं तस्लीम करे थो, चए थो ॿीहर मां पंहिंजी घरवारी खे नाराज़ न कंदुमि, भले चाहे तव्हां मूंखां लिखत में ते वठी छॾो, इनशाला मुंहिंजी घरवारी ॿीहर हिन कोर्ट में न ईंदी, मां हिन जी हर जाइज़ डिमांड पूरी करण लाइ तयारु आहियां. त मेजोरिटी ऑफ केसिस में छा थींदो, असांजा केसिस प्री ट्रायल में ई सोल्व थी वेंदा
0: आहिनि.
1: हार्डली केसिस ईअं हूंदा आहिनि जेके कुला ग्रांट थी वेंदी आहे एंड दे मूव सेपरेट, दे मूव फ्रॉम वन एन अदर, दे पार्ट देयर वेस, हिकिड़े रस्ते ते छोकिरो ॿिए रस्ते ते, ठीकु आहे. उन कंडीशन में असां प्री ट्रायल में असां ज़्यादातर केसिस सोल्व थी वेंदा.
0: ओके, अच्छा सर, खुला खां बाद में जेको आहे कुझु ॿिया बि राइट्स आहिनि औरत जा हस्बैंड ते?
1: खुला खां पोइ मेंटेनेंस आहे. खुला खां पोइ तव्हां औरत मेंटेन क्लेम करे सघे थी. पहिरियों त इदत पीरियड में हली वेंदी, उहा इदत पीरियड पूरो कंदी त इदत पीरियड जो जेको उहा उहा क्लेम कंदी. अगरि कुला सां गॾु ई हुननि मेंटेनेंस जो केस दाख़िल कयो आहे त पास्ट प्रेज़ेंट फ्यूचर मेंटेनेंस बि वठी सघे थी पई, पर जॾहिं कुला ग्रांट थी थी वञे त पोइ इदत पीरियड जी जेकी मेंटेनेंस आहे उहा हुनजे मथां हस्बैंड जे मथां जेको आहे न ऑब्लीगेट थी थी वञे, ऐं उनखां पोइ जेको हक़ आहे उहा हक़ महर औरत जेको आहे न डिक्लाइन कंदी, कुला वठे थी त डिक्लाइन कंदी, जेको हस्बैंड जो आहे उहो हुनखे वापसि कंदी. अगरि हुन हक़ महर में सोन बि आहे, अगरि हुन हस्बैंड सोन ॾिनो आहे त उहो औरत खे ॾियणो आहे, एज़ पर शरिया बि हुनखे ॾियणो आहे. ऐं रहियो डावरी आर्टिकल्स जो, त डावरी आर्टिकल जीअं कुला ऐं इदत पीरियड पूरो थींदो त उहो डावरी आर्टिकल्स उहो क्लेम करे सघे थी ऐं पंहिंजो इदत पीरियड जो मेंटेनेंस उहा बि क्लेम करे सघे थी पई फ्रॉम द हस्बैंड.
0: ऑल राइट, सो सर, प्रोग्राम जो वक़्तु बि तक़रीबन पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे. लास्ट में तव्हां असांजे लिसनर्स खे, स्पेशली जेके असांखे ॿुधनि पिया, हस्बैंड वाइफ्स, स्पेशली वाइफ्स जेके आहिनि त मामूली ॻाल्हियुनि ते जॾहिं रुसी वञनि थियूं, या हस्बैंड जेके आहिनि परेशान लॻा पिया आहिनि, या राइट्स हिक ॿिए जा वायोलेट कनि पिया, अनअवेयर आहिनि, उन्हनि खे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा त जीअं हू डाइवोर्स या अहिड़े खुला जी तरफ़ वञण खां पहिरां इहे जेके नॉर्मल ऐं नंढा नंढा मसला आहिनि उहे पाण ई जेके आहिनि त हल करे वठनि?
1: मुंहिंजी हिकिड़ी सलाह इहा ई हूंदी बाबर सभिनि खे ॿुधण वारे, जेसि ताईं मुंहिंजी आवाज़ु वञे थी, मां जेकी मूंखे अलाए इल्मु ॾिनो आहे उन हिसाब सां मां ॻाल्हाईंदुमि, के अगरि तव्हांजो डिसीशन अची चुको आहे तलाक ते या डिसीशन अची चुको आहे कुला ते, त काइंडली पंहिंजे ॿारनि खे सिर्फ़ु ॾिसी वठनि हिकु दफ़ो, त जेके साम्हूं मासूम ॿार घुमनि था इन्हनि जो छा थींदो, छो की जेके सभिनि खां वधीक इफ़ेक्ट थींदा आहिनि उहे पेरेंट्स जे दौरान उहे ॿार थींदा आहिनि. इन जे करे सभिनि खां वधीक नापसंदीदा अमल जेको आहे न अलाह खे पसंदि आहे उहो तलाक आहे, ठीकु आहे. उन सां ॿियो कुझु न थींदो, ॿ फैमिलीज़ पाण में अलॻि थी वेंदियूं. हाणे तव्हां अंदाज़ो लायो, तव्हां बि इन ई माशरे में रहो त मां बि सेम माशरे में रहंदो पियो, मेहंदी का वी कर मेहंदी तो चवो नालो पोती जैसे चवन्दा आऊँ रसम का वी कर मंगनी का वी कर इतों का वी कर वेंदे सतावड़े तई केडो कमाल जो मंजर हों जैमें असा शादी जैमें अस ईदू भी इंदियन जैमें असा इवेंट्स भी इंदा केडे शौक से केडी मोहब्बत से सामान खड़ी वेंदा सेलिब्रेट कदा या फैमिली मेंबर्स में अगर जनरली भी गैदरिंग थी वेंदी तो उन कपल्स से केडो डिस्कशन कदा तुझी शादी जैसे शादी जहाँ इवेंट्स हूँ केडो बेहतरीन तरीके से पूरी ब फैमिलीज जी डह डह फैमिलीज पूरा सेलिब्रेट कदन सेलिब्रेट वह जी खुशी आ वह सिर्फ नंढड़ी तल्क कलामी थे वह सजी सजी जो रिलेशन आ सजो सजो खराब तो थे मान तो चवं तो मेजॉरिटी ऑफ केसिस में ये मेजॉरिटी ऑफ केसिस में रिलेशन्स इलाही जैसे खराब थी वन तदे वही हालात तलाक ए कुला पुजदान अगर नॉर्मल सिचुएशन आ कंट्रोलेबल आ कंट्रोल कर सकते थी तो मैं चवन तो फैमिली पैं रोल प्ले करन इन का बेहतर आ तो पैं बच्चन के जरूर एक दफो ऐसा कदें भी जहन में अगर उनके या अचे या अड़ो को मूवमेंट क्रिएट थे तो मैं घरवारी के तलाक तो दें या वाइफ चे तो मैं मुड़स का कुला थी वा दे नीड टू सी देयर चिल्ड्रंस बस अल्लाह करे मुझी यही दुआ है सभी से अल्लाह सभी के घर में हिफ्ज़ अमान रखे हस्बैंड ए वाइफ जी भी जाते भी अल्लाह की पनाह में हुजन ठीक है उन्होंने बच्चा उन्होंने गड ही अटैच हुजन पैंकी सुठी जिंदगी पैंकी सुठी लाइफ स्टैंडर्ड गुजारन मुझी दुआ यही है मुझी एडवाइस भी यही है।
0: चलो शहबाज साहब तुम्हारी मेहरबानी
1: थैंक यू वेरी मच
0: सो बिल्कुल व्यूअर्स प्रोग्राम जो वक्त भी पैं पुराणी से पौतो ए प्रोग्राम के हवाले से को फीडबैक दियण हुए तो असर व्हाट्सअप नंबर से ढींद असो नंबर है 03000113488 फीडबैक तक गाल याद आई तो माजरत को आया तुम्हारी कॉल्स प्रोग्राम इंक्लूड न कर सकियां तो नेटवर्क जो इशू अचे पे इनके मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कदस अगले प्रोग्राम में वरी नए टॉपिक से गुड अवसर मुलाकात थी तेसी तई अल्लाह हाफिज़ ए जिंदगी बखैर।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणज पहिरियों कदम वधायो
2: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601001
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।
4: और ये है मेरी खूबसूरती का राज चुटिया और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहराबपुर 03000310509 03000310509 हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहराबपुर 03000310509 03000310509 हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है

तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम सुनने वालों का, चाहने वालों का, जिन्होंने प्यार दिया, मान दिया, मोहब्बत दी, हमें रिस्पॉन्स दिया और हमारी ये प्रोडक्ट, हमारे जो है कि मिल्क राइस की ब्यूटी प्रोडक्ट की जो है कि उन्होंने उन पर एतमाद किया, क्योंकि ऑलरेडी हम कहते हैं कि भरोसा जो दिल जीत ले और खूबसूरती जो नज़र आए। जी जनाब, मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वालों की दावा है कि 3 दिन में ग्लो, चेहरा साफ, आपके चेहरे पे बिल्कुल एक निखार आ जाएगा और जो है कि रंगत साफ सुथरी नजर आएगी। और अब तक का जितना हमें रिस्पांस मिला है, बिल्कुल यही मिला है कि चीज हमने, मतलब कंपनी ने 3 दिन का दावा किया और जो है कि लोगों ने 1 दिन की भी रिस्पांस दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, 1 दिन में भी उसके अंदर जो है कि ऐसा कुछ है कि वो लगातार कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से वो हमें फायदा दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो फिर आज जिन लोगों ने हमें न्यूली ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि मिल्क राइस ब्यूटी शो की ब्यूटी सी प्यारी सी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्ने क्रीम। और ऑलरेडी जो हमारे पुराने सुनने वाले लिसनर्स हैं उनको तो पता ही है कि मिल्क राइस की कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं और मिल्क राइस की प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से मिलती है। बाकी जिन्होंने आज ट्यून किया है, वंस अगेन उनके लिए और आप सब के लिए मैं रिपीट करता हूँ कि हमारी ये प्यारी सी प्रोडक्ट मिल्क राइस की ब्यूटी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर और अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर पर। और इसके अलावा अगर अवेलेबिलिटी करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट की आप कहीं पे भी अपने पसंद के, मनपसंद के या इलाके के करीबी जनरल स्टोर पे, तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी। हमारी हेल्पलाइन, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-509। और उस पे कॉल करके आपने बात करनी है। मलिक जफर इकबाल बहुत ही प्यारे और लाजवाब पर्सनालिटी, मिजाज बहुत अच्छे, खुश मिजाज बंदे हैं, उनसे बात करनी है। वो सीईओ हैं, हेड हैं मिल्क राइस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, उनसे बात करें और हमारे सलाम भी दें। हो सके तो मुलाकात हो जाए तो झप्पी भी डालें और उनको मसला बताएं कि कहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये प्रोडक्ट, कहाँ पर नहीं मिल रही है। वैसे तो उन्होंने बहुत जगहों पर अवेलेबल करवा दिए, तो कॉल भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक प्रोग्राम का पैटर्न है। मलिक जफर इकबाल को भी हम करते हैं डेडिकेट और तमाम सुनने वालों को भी करते हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा में हम जो है कि कसीदा प्ले करते हैं।

जी दोस्तों, तो आज आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और हमारा हेल्पलाइन के अलावा हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है जिस पे आपने कॉल करके हमसे बात करनी है। आसा सा कचहरी हूँ कही हो दोस्तों, कारी कोने में दासी जैसी जी रहा हूँ, वहाँ सा जुड़े लाए हूँ। अच्छा हूँ वनणो धर के क्या है दुनिया फानी आ जहान फानी आ, लेकिन जैसी आई हूँ एंजॉय द लाइफ। पंजे बच्चन के टाइम दियो जेके अवां सां प्यार कनि था, उन्हनि खे टाइम ॾियो वध खां वध, ऐं उन्हनि जो अहसासु हिननि ॻाल्हियुनि जो बाद में थींदो आहे, या असांजा उहे एल्डर्स आहिनि वॾा आहिनि उन्हनि जे वञण खां पोइ असांखे थींदो आहे, या असां कंहिंजा वॾा आहियूं त असांजे वञण खां पोइ असांजी फैमिली खे पोयां अहसासु थींदो आहे। बाक़ी सभु दोस्त यार संगत मिलंदा रहंदा ईंदा रहंदा, उन्हनि खे बि सारिजे यादि कजे, उहे अवां जूं मुहबतूं आहिनि, असां हिक ॿिए खे बि यादि कयूं पिया। पर सभिनी खां वधीक राइट जेको आहे उहो फैमिली जो आहे, किथे असां बि खुटल हूंदासीं उन मामले में त फैमिली खे टाइम अञा वधि ॾियणु घुरिजे। पर हिकिड़ो उर्दू में शेर थो पियो यादि अचे त यार फिक्रे मुआश यादे रफ्तगां, फिक्रे मुआश यादे रफ्तगां इश्के बुतां, फिक्रे मुआश यादे रफ्तगां इश्के बुतां, दो दिन की जिंदगानी में क्या क्या करे इंसान। मतिलबु मुआश जी ग़लती ॻणती, कारोबार जी या कमकार जी ॻणती, रोज़ीअ जी ॻणती, इहा बि हिकिड़ी वॾी फ़िक्र आहे। ऐं उन खां अलावा फ़िक्र मुआश खां अलावा यादि रफ़्त खां गुज़िरियल यादूं, जेके हादसा या इंसिडेंट्स या प्यारियूं सारूणियूं या जेके आहिनि त ग़म ट्रेजिक या कंहिंजो विछड़ी वञणु, उहे बि यादि कजनि, ऐं उहे बि आहिनि असांजी ज़िंदगी में। उन खां अलावा इश्के बुतां, मतिलबु उन में इबादत बि अची वई त पोइ हसीननि ऐं पंहिंजनि प्यारनि सां पिरनि सां दिलि रुबाउनि सां प्यार बि अची वियो, त इहे टे शयूं मिलाए करे सॼी ज़िंदगी जो लुबे लुबाब ॿुधाइजे थो पियो त छा इंसान करे हिन थोरी नंढड़ी उमिरि में। त पोइ इंटरटेनमेंट बि ज़रूरी आहे, ऐं इंटरटेनमेंट ज़रूरी आहे त डेफिनेटली असांजो प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो ॿुधण बि ज़रूरी आहे, ऐं उन में प्यारियूं प्यारियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, ज़बरदस्त दोस्तनि सां ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे।

जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो GAFM 94 मेहराबपुर। त दोस्तों, वक़्तु थियो आहे हींअर प्रोग्राम में आगाज़ इब्तिदा कंदासीं ख़ूबसूरत हिकिड़ी मनकबत सां, हिकिड़े कसीदे सां। ऐं कसीदा ॾाढा प्यारा प्यारा ऑलरेडी असां अव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं ऐं ॿुधाईंदा रहंदासीं। अॼु कसीदो शामिलु कंदासीं

जी जी अच्छे बिल्कुल थोड़ो मुडे रे शोर आहे जी क्या अक्रम अक्रम जतोई वेलकम भलीकार पैरा खुशामदीद जी क्या

0: सभिनी सॼणनि खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम।
1: वालेकुम सलाम साईं, तव्हां प्रोग्राम ख़तमु था कयो?
0: लख थोरा प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया असांजी।
1: जी जी साईं,
0: प्रोडक्ट वरिती अथव
1: जी साईं,
0: मिल्क राइस जी प्रोडक्ट वरिती अथव?
1: न साईं, न
0: इहा वठो न, इस्तेमालु कयो न।
1: हा जी, नंबर लिखो
0: वॾी महिरबानी।

0: जी दोस्तों, जी दोस्तों, सांसद लाइन पे कॉलर मौजूद हैं, कॉल शामिल करना से प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, खैर सही के था। हेलो, कॉल शामिल कौन करे से किया थे? बो कॉलर आए लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, खैर सही के था। रांझन हिसबाणी, वेलकम मलिकार, खुश आमदीद, प्यारा कड़ालन, खुश आयो।
1: खैर लगो पिया,
0: दुआओं अल्लाह एहसान आवा बुधायो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब जा एहसान साईं।
0: सब का पहले सवाल अस प्रोडक्ट के हवाले से होंगी है, कारण तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। नफ़कत या फर्जी गाल कर असा मोहब्बत क्यों था, अवा जो मोहब्बत असान तो डेफिनेटली दिल से अवा सा कचहरी कह गाल बोल कह तो प्रोडक्ट के हवाले से अस मालूमत वन चाहे अवा के जान है असि प्रोडक्ट की बुधंद तो पैर इस्तेमाल कदें कौ वो कदें यकीन है यकीन है मुझे जो भी प्रोग्राम बुधन वारा मूसा जो गाल बोल कन था वह उन अमल भी कन था। वही मेहरबानी, चवण चाहो ठीक है। निगत आबदा फरजाना ट्रिनी फीमेल्स जो परसाइण आबदा जो तो नाम ही हाँ मौजूद है। ठीक है प्यारा भा, बुधंदा रहो प्रोग्राम, ये टे सॉन्ग्स लाजमी शामिल कदा से प्रोग्राम में। डेडिकेट करना चाहे तो कें जी दोस्तों, प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो से गड आऊं आया आबिद चौहान, आया हूं बुधी रहा हूं जी एफ एम 94।

जी दोस्तों, कॉल्स बि अटेंड कंदा रहंदा से ऐं अवां जो मान प्यार चाह मिली रहियो आहे, पर असां थोरो घणो अवां जो हुकम जी तामील बि कंदा हलूं ऐं ट्रैक बि प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। त पोइ अचो गॾिजी निगम न्याज जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस सां गॾु ही गीत इंजॉय कयूं ऐं उन खां पोइ वरी वधंदासीं असां अवां जी कॉल्स ॾांहुं। अचो त गॾिजी ही ट्रैक इंजॉय कयूं।

जी दोस्तों, वेलकम बैक प्रोग्राम दिल प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान। आयां ॿुधी रहियो जी एफ एम 94 मेहराबपुर जी स्लिप ऑफ टंग। त दोस्तों, असां जेको मिज़ाज आहे, जहिड़ो हाल बि मां तहिड़ो पेश परियां। सो काफ़ी दोस्त एक्सपेक्ट कंदा आहिनि त हीअं हुअणु घुरिजे, हुअण हुअणु घुरिजे, छाकाणि त असां जेको त रोमेंटिक मोड में हिकिड़ो नाइट में प्रोग्राम बि कंदा हुउमि साॻी सेम स्टेशन यानी खे ते, पोइ उहो कनेक्टेड हूंदो आहे ऐं उन में बि अवां महबूबनि जूं कॉल्स हूंदियूं आहिनि। पर हाणे कोशिशि कंदा आहियूं त हेॾे मिज़ाज खे थोरो बदिलाइजे, पर जेका फितरत हूंदी आहे, फितरत हैबिट कैन बी चेंज बट नेचर कॉन्ट बी चेंज।

दोस्तों आर्ट जी जेको आहे त पब्लिक प्रॉपर्टी हूंदो आहे ऐं का बि सेलिब्रिटी इवन असां पाण खे सेलिब्रिटी त कोन था सम्झूं पर आर जे जा फ़राइज़ जहिड़ा तहिड़ा जहिड़ो हाल बि मां थोरो पेश करियां उहे अदा कयूं पिया अवां जे साम्हूं शला वहां खे क़बूल पवनि त पोइ उहे जेके आहिनि त अवामी माण्हू उनखे थियणो पवंदो आहे ऐं कोशिशि कंदा आहियूं अवामी थियण में उनमें जेको आहे त मिज़ाज मुख़्तलिफ़ मिज़ाज जा माण्हू कॉल कंदा आहिनि उन्हनि सां गॾु उन रफ़्तार सां हलण जी कोशिशि कंदा आहियूं जॾहिं त हालांकि मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तुम समंदर हो मैं साहिलों की हवा।

जी मिलग्राइस ब्रिटिश हो सां गॾु मां आहियां आबिद चौहान ऐं हा मुदीर आहियो जी एफ एम 94 मैरापुर. असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-9390-6067. हिन ते कॉल करे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था. ऐं उनखां अलावा असांजी प्रोडक्ट्स मिलग्राइस ब्यूटी क्रीम, मिलग्राइस ब्यूटी सोप, मिलग्राइस ब्यूटी एक्नी क्रीम, ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले, इहे तमामु तर ख़ूबसूरत प्यारियूं प्यारियूं प्रोडक्ट्स अव्हां खे अव्हां जे पंहिंजे शहर मैरापुर जे शाही बाज़ार जे हर वॾे जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहिनि. जंहिंमें ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोहल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर ते पिण दस्तियाब आहिनि. ऐं इन खां अलावा अव्हां जेकॾहिं पंहिंजे मनपसंदि जनरल स्टोर या कंहिं पंहिंजे वेझे तर में, पाड़े में, ओड़े में, शॉप ते, स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराइण चाहियो था, त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करणो पवंदो. असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9. इन ते कॉल करे अव्हां प्यारे प्यारी दिलरुबा असांजे दोस्त मलिक ज़फ़र इक़बाल साहब सां ॻाल्हाईंदो ऐं पंहिंजो प्रॉब्लम को आहे त प्रोडक्ट जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल बयानु कंदो ऐं मुंहिंजा सलाम लाज़मी ॾिजो उनखे. अच्छा, हिन विच में एम सिद्दीक़ साहब जेको आहे त असां सां बि थोरो राब्ते में घटि आहे, पर उन सां बि ॻाल्हि ॿोल अव्हां थी सघे थी. एम सिद्दीक़ साहब ऐं मलिक ज़फ़र इक़बाल साहबु बिल्कुलु नाइस पर्सन आहे, ॿई गॾु हूंदा आहिनि, पोइ इन्हनि ॿिन्हिनि मां कंहिंसां बि ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी अव्हांजी.

जी बिल्कुल दोस्तों, फरमाइशूं बि आहिनि हिकु ॿ ॿियूं, ऐं उन सां गॾो गॾु कॉलर्स बि आहिनि. कंहिं दोस्त चवाणी तव्हांजे प्रोग्राम में काफ़ी रश थी वई आहे, सो मूंखे मज़ो थो पियो अचे बेहद, लेकिन अवांखे थोरो तकलीफ़ुनि में इज़ाफ़ो ज़रूरु थियो हूंदो, छाकाणि त कॉल जे मथां कॉल आहे त पोइ कुझु कॉलूं अटेंड करे सघूं पिया कुझु न, सो कोशिशि कंदासीं प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं. अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? हलो, वालेकुम सलाम, केर अदा किथां खां? हफ़्तो थी वियो आहे प्रोग्राम ॿुधो पिया. कीअं पियो लॻे प्रोग्राम? पोइ प्रोडक्ट जे हवाले सां का ॼाण आहे? कंहिंजो? ठीकु आहे भाउ, कोशिशि कंदा.

जी दोस्तों, प्रोग्राम में साइन आपदा परवीन जो खूबसूरत कलाम शामिल कंदासे, उनखा पो वरी अवां जो फोन कॉल्स अटेंड कंदासे। ही जिन फरमाइश कई दोस्त उन आए उन सा गड GFM 94 जे तमाम सबनी बुधंदड़न जे नाव स्पेशली मलिक जफर इकबाल साहब के भी डेडिकेट क्यों था ही गीत तू झूम झूम झूम।

जी दोस्तों, वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्रिटिश शो सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अवां ॿुधी रहिया आहियो जी FM 94 मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स जूं तमामु ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स ब्यूटी क्रीम ब्यूटी सोप ऐं एक्नी क्रीम मिल्क राइस वारनि जी दावा आहे त मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम टिनि ॾींहनि में अव्हां जे चेहरे ते ग्लो ऐं ताज़गी आणे थी ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले मिल्क राइस जूं इहे तमामु सभई प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि अव्हां जे पंहिंजे शहर जी मेन शाही बाज़ार यानी मेहराबपुर जे हर वॾे जनरल स्टोर ते जंहिं मझां ख़ुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहराबपुर हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर

जी दोस्तों, कॉल अटेंड करण में थोरो टेक्निकली प्रॉब्लम अचे पियो, पर वरी भी कॉल अटेंड कंदासीं, कोशिशि कंदासीं हिकिड़ी कॉल या ॿ कॉल असां शामिल करे वञूं। अस्सलामु अलैकुम, केर साईं किथां खां?

जेकरे क्लियर मुता ही न पियो छे सो मदद काया कॉल शामिल कोन थी सकदी वधिक दोस्तों सबनी का सबनी सरिणन महबूबन का मदद कायूं थोड़ी घणी टेक्निकली प्रॉब्लम जे करे असा वध में वध कोशिश कई से अमा जो कॉल्स भी शामिल कजन प्रोग्राम में कंदा रहंदा से इंशाल्लाह नेक्स्ट भी यही सिलसिलो जारी है सारी रहंदो जैसे ताई अमा जो साथ आए मुझो भी अमा सा साथ रहंदो ए असा जो गरिल साथ रहंदो आए यो अठे का नाए ताई हियर टाइम बिल्कुल 5 मिनट बचो आए फरमाइशों भी थेलन फरजाना परवीन जी आपदा भी थी मैडम निगत भी थी कसीदो भी तमाम प्यार थी हम हाँ शामिल करने की कोशिश कहते लास्ट आखिरी ख्वाहिश उन भी इजाजत वासी

फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल, ख़ासि

ऑफर महदूद वक्त लाए आहे तें करे अजु ही राबतो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाए farwardcollege.pk वधिक जानन लाए 03042827274 ऑफिस टाइम सुबह 9 खां शाम 5 वगे ताई एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे सामो वापडा कॉलोनी खैरपुर अजु ही दाखला वठो पंजे मुस्तकबिल के महफूज बनायो एक कामयाब उस्ताद बनजण ना पहिरियो कदम वधायो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इर्शाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

पंहिंजी उमिरि अजाई वई मींहं फुड़ियूं थी आई वई छांव छपर जी कहिड़ी ॾे छांव छपर जी कहिड़ी ॾे धरती आहे पराई वई निम जा पन कका थी विया निम जा पन कका थी विया चार घड़ियूं हुई साई वई पंहिंजी उमिरि अजाई वई निम जा पन कका थी विया चार घड़ियूं हुई साई वई चंड मथाहूं मकलीअ ते चंड मथाहूं मकलीअ ते सारी रात सजाई वई पंहिंजी उमिरि अजाई वई।

मूं त चयो हो खॾ अथव, मूं त चयो हो खॾ अथव, हा पर विख वधाई वई, पंहिंजी उमिरि अजाई वई। मूं त चयो

अथव हा पर विख वधाई वही सारी सारी रात आयाज सारी सारी रात आयाज सोचे अख न लाई वही पहजी उम्र अजाई वही

0: वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: नूरे जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो ॿुधाइनि पिया, भला इहो त ॿुध ऐं वठी अचु।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार, वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर,
6: 0300-338-5569।
7: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
7: न अदा?
8: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
8: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण, 0301-380-8743।
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: 到每个下人的旅游的别来别来别到看不到
1: लाजवाब लाजवाब लाजवाब ॾाढी ख़ुशी थी अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे अवां जो गीत ॿुधी करे छा चवणु चाहींदो ॿियो कुझु को दोस्तनि जे नाव कुझु को डेडिकेशन्स हलो सागर मुंहिंजी आवाज़ अचे पई ठीकु आहे सागर सॉन्ग खां पोइ जेको आहे त किथे ॿिए हंधि मसरूफ़ थी वियो सो प्रोग्राम में असां ॿी कॉल शामिल कंदासीं असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूदु आहिनि अस्सलाम वालेकुम केरु साईं किथां खां कहिड़ो जो अथई अबरार जो अथई साहिबु वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद कहिड़ा हालनि प्यारा अवां जी मां सम्झां थो हीउ पहिरें भेरे कॉल आहे प्रोग्राम में मुंहिंजे प्रोग्राम में हिन में ॿुधो पिया प्रोग्राम जी मूं कॾहिं चयो त सिंगर आयो मूं चयो प्रोग्राम कॾहिं खां ॿुधो पिया असांजो इलाही टाइम थियो आहे कॉलेज लॻी
2: आहे
1: अच्छा सिंगर न आहियो पर सॉन्ग्स वणंदा त आहिनि ईअं न
2: बिल्कुलु
1: ऐं शायरी बि वणंदी हूंदी ॿुधंदा बि आहियो या पढ़ंदा बि आहियो शायरी रुगो पढ़ंदा आहियो सॉरी रुगो ॿुधंदा अच्छा ठीकु आहे त पोइ कुझु ॿुधाइण चाहींदो या रुगो ॿुधंदो दोस्तनि खे शामिल कयो ठीकु आहे जी क्या भलीकार भाउ खे शेरल भर साहब खे बि वेलकम भलीकार कलाम ॿुधाए छॾियो फरमाइश सॼो सॼो ॾींहुं जी दोस्तो असांजी कोशिश हूंदी त ब्रेक ते वञण खां अॻु में मैक्सिमम कॉल्स अटेंड कजनि अव्हांजो प्रोग्राम में ऐं ब्रेक खां पोइ वरी जेको आहे त फरमाइशनि जो सिलसिलो हलंदो अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां
3: वालेकुम सलाम
1: केर जानी किथां खां
3: गुलाबी संगत मां हमदर्द हुसैन बख्शिस्तरो साईं
1: गुलाबी संगत इमदाद हुसैन
3: हमदर्द हुसैन बख्शिस्तरो
1: हमदर्द हुसैन बख्शिस्तरो क्या बात है साईं वेलकम वरी कार खुश आमदीद कहिड़ा हालनि प्यारा ख़ुशि आहियो
3: अलाह साईं जा एहसान तव्हां ॿुधायो भाउ तव्हां जी तबियत
1: ख़ैरियत थी आहे दुआ दुआ अलाह जा एहसान छा ॿुधाईंदो अॼु
3: अॼु जी गज़ल आहे जाने
1: बिस्मिल्लाह इरशाद
3: अखियुनि खे अखियूं खे वणी वेंदियूं आहिनि
1: अखियुनि खे
3: अखियूं खे
1: हा
3: अखियूं
1: वणी वेंदी आहिनि ठीकु
3: धोरी धारो दिलि ते हणी वेंदियूं आहिनि
1: वाह वाह वाह
3: बणिया मस्त मजनू ऐं पागल चरियासे
1: हा
3: बणिया मस्त मजनू ऐं पागल चरियासे ॾई जन खे मोहबत घणी वेंदियूं
1: आहिनि
3: जीअं कोई चकमक छिके लोह खे थो
1: हा
3: जीअं कोई चकमक छिके लोह खे थो
1: जी
3: जिगर थी रेतीअ दिलि टणी वेंदियूं आहिनि अखियुनि खे अखियूं खे वणी वेंदियूं
1: आहिनि
3: तंहिंखां तख़्त शाही छॾाए छॾनि थियूं
1: जी
3: तंहिंखां तख़्त शाही
1: छॾाए
3: छॾनि थियनि थियूं हणी जिन खे थोरी अणी वेंदियूं आहिनि
1: कंहिंखे
3: साल हमदर्द सिक में सिक आहिनि कंहिंखे साल हमदर्द सिक में सिक आहिनि कंहिंजे मन जी मूमल बणी वेंदियूं
1: आहिनि लाजवाब ख़्याल तमामु लाजवाब
3: अखियुनि खे अखियूं खे वणी वेंदियूं आहिनि
1: वक़्तु आहे ब्रेक जो पहिरां कुझु नाव शामिल करणु चाहींदो दोस्तनि जा ठीकु आहे कोशिशि कंदासीं असां इहो प्रोग्राम में शामिल थियूं अवां नाव खणी छॾियो दोस्तनि जा जेके दोस्त ॿुधंदा वॾी महिरबानी थैंक यू
3: अलाह हाफ़िज़

0: दोस्तों ब्रेक का पोए वरी वरंदा से बुधंदारो GFM नेटवर्क
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

शमन आया अहमद सां गॾिजी करे कन जी वाली असांखे वरी शमन अली मेरा वाली आवाज़ में मिली वियो अचो त ख़ूबसूरती ट्रैक इंजॉय कयूं गॾिजी करे कन जी वाली नक जी फुली

0: जी दोस्तों, कोशिश होती है न्यूज़ ब्रेक आग में अजा एक कॉल शामिल कर जे। दोस्तों अवां जी फरमाइशों भी अखियन से पर मुझी प्रायोरिटी होंगी है तो सब का वध में वध अवां जो फोन कॉल शामिल कजन छाकाण तो दोस्तन जो दम ते ही असो प्रोग्राम है अवां सा गाल बोल करे अवां सा असा पैंजी दिल जी गाल कदा असा के बेहद खुशी थी है। लाइन ते कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं के थागा? शफकत भट्टी किथां प्यारा? शक्कर
1: जी,
0: वेलकम वेलकम वेलकम भलीकार भट्टी साहब, कड़ाल खुश है दिल करे असल में दिल जी गाल है ना प्रोग्राम तब
1: जो जी गाल ये आज तमाम बेहतर
0: जी
1: के इन में एक अद थोड़ी
0: बॉडी प्रोग्राम में रखियो है अज ता नाव खायो आ बरकत मुझे शहर जो आ बरकत चाचा जो दोस्त आ एडवोकेट मंजूर चौहान साहब जो पुरानो जको गीत तो जगाए थई असा के सारी दस बरकत साईं की
1: तो गानो आए को नडो जे अगर थी सके तमा कदर मेहरबानी थी
0: लाजमी थी दो साईं लाजमी थी दो बरकत जो
1: थी पछी प्यार वाले शहर में बंदो रहा
0: इयो इहो ही ट्रैक असा अग में इन में साईं अब्दुल गफर तबसुम जी शायरी आए उन में ही एल्बम में गीत हुयो रोशनी तुझी चंद्र सितारन में असा शामिल कियो से आज कयो साथी पखी मा प्यार वाले बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: थैंक यू पर कह दोस्त
1: नाम तो मान शायद आजाद शेख सुनंदा हो तमा
0: के के
1: आजाद शेख
0: जी साईं के न सुनाने साईं आजाद शेख साहब के
1: असन डेली करके लगनी को असन भा मानुआ
0: जी साईं
1: जो पुत्रा लाल मोहन जानू फटी
0: जी सर फरमाइश भी पूरी कंदासीं। थैंक यू सर,
1: थैंक यू,
0: लव यू, थैंक यू।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।